0: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो. बाहर से भेजी गई रकम बैंक अल हबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिट

0: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. रिश्ता भरोसे का.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.

फील्ड मार्शल सिर आसिम मुनीर चवाहे तो अमेरिका हैकरों को बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। 7 मई के विच वाली रात का 10 मई तई दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमायण की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचतो ईंदड़ जंग न हुई। माजी में भी दुश्मन पाकिस्तान की बेबुनियाद हथ ठोकिया इल्जाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय जहाज मुंह टोड़ जवाब दिनों पो। पाकिस्तान की दुश्मनी के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसो पो। अमरीश ऑपरेशन बणायल मरसूस के एक साल मुकम्मल थे जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कन्दे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो दुश्मन जानी वाणी पाकिस्तान खिलाफ अगते अग्राई जा असर इंतहाई खतरनाक तकलीफ हूं। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान के अस्करी जहाज सफारती अकेलाई जो निशानो बढ़ाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे। यो ख्वाब उन कद ए सलाहियत का घणो वधीक है जो पाकिस्तान कदें भी कामयाब थन न डी। फतेह मिजारन ए पाक फिजाया के शाहिन दुश्मन के 26 का वधीक फौजी हदफन के कामयाबी से निशानो बढ़ाया। अवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम है मुल्की खुदमुख्तियारी सरहदी सलामती।

0: just wait for our response.
1: Pakistan, hamesha zindabad.
2: हक जी जंग में भारत जी प्रतनाक शिकस्त एक साल मुकम्मल अज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मल्हायो पियो वञे। जीएच रावलपिंडी में शानदार तकरीब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज एंड फील्ड मार्शल सदावसम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल सदावसम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ जी शहीद की यादगार से हाजिरी दस्तो रखियो पियो ए फातह खानी कई। आईएसपीआर पारा जारी थियल बयान में छह बाद कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी बार चर्जन के मुंह डेण लाइ मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतेह हथियारबंद फौजन की तैयारी जहा ए पेशवराना सलाह जो सबूत है। हक जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज एतमाद के मजबूत किया है।

भारत खिलाफ़ ऑपरेशन अमेरिका हक़ जी कामयाबी के एक साल मुकमल थियण ते सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जो क़ौम ऐं पाक फ़ौज खे वाधायूं। आसिफ ज़रदारी चयो त पाकिस्तान अमन पसंद रियासत आहे, पर हर जारियत जो भरपूर जवाब ॾियण बि ॼाणूं था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी क़यादत में पाक फ़ौज दुश्मन खे मुंहं टोड़ जवाब ॾिनो। भारत जे गैर क़ानूनी कब्ज़े हेठि वलायल कश्मीर जो मसलो ठहराइण मुताबिक़ हल थियणु घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम जी इख़लाक़ी ऐं सफ़ारती हिमायत जारी रखंदो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पंहिंजे पैगाम में चयो आहे, दुश्मन ख़िलाफ़ कामयाबी ते अल्लाह ताला जे बेशुमार निमतनि ऐं अहसासनि लाइ सजदो करण जो ॾींहुं आहे। अॼु असां उन अज़म हिमत ऐं साबित क़दमी खे यादि कयूं पिया जेका पाकिस्तान आज़माइश जे वक़्त में ॾेखारी, दुश्मन खे ज़बरदस्त शिकस्त ॾिनी। भारत खिलाफ़ हक़ जी जंग में कामयाबी खे एक साल मुकमल थियण ते पीपल्स पार्टी कराची जे सीवीओ वटि शानदार तकरीब। वॾे वज़ीर मुराद अली शाह ख़िताब करे चयो त पाकिस्तान हक़ जी जंग में दुश्मन खे इबरतनाक शिकस्त ॾिनी। भारत सदाई पाकिस्तान ते कूड़ा इल्ज़ाम लॻाईंदो रहियो आहे। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क आहे ऐं खिते में अमन टोड़े इस्तेहकाम चाहे थो। सदर आसिफ ज़रदारी शेख बिरेंद्र भुट्टो चीन खां मिज़ाइल टेक्नोलॉजी वरिती। पाकिस्तान इहा मिज़ाइल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे कुझ ही कलाकनि में भारत खे शिकस्त ॾिनी। भारत खे पंहिंजनि ई जहाज़नि ते वॾो नाज़ हो। पाकिस्तान उहे जहाज़ किराए तबाह करे छॾिया। अॼु पाकिस्तान खिते जो अहम मुल्क बणिजी चुको आहे। अमेरिका हक़ में कामयाबीअ जी ख़ुशीअ में गवर्नर हाउस में बि शानदार तकरीब। भारत खे वज़नदार शिकस्त ॾींदड़ पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई।

अकबर जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में रैलियूं, कराची डॉक्टर्स जीएनसीएच खां जना अस्पताल ते रैली, पाक फौज के भेटा पेश, टंड मोहम्मद खान में पुलिस जवान पारा जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते रैली कढ़ी पई, पनवाकल में पाक फौज की हिमायत में रैली निकती, खैरपुर में मेडिकल कॉलेज का सिविल अस्पताल से रैली कढ़ी वही, लड़कणों में तालीम खाते पारा जंग में कामयाबी की खुशी में रैली कढ़ी वही, पीर जो गोठ में मुख्तलिफ स्कूलों के उस्तादन शागिर्दन शागिर्दायन पारा रैलियों कढ़ी वयू, भारत के इबरतनाक शिकस्त देने पाक फौज के भेटा पेश कई वही। अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध जेलन में भी तकरीबूं, सेंट्रल जेल सखर में अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते तकरीब, जेल अमले या कैदन की शिरकत, खैरपुर जो डिस्ट्रिक्ट जेल में भारत के शिकस्त देने पाक फौज के भेटा पेश करने तकरीब थी, हैदराबाद सेंट्रल जेल में अखबारी जंग में कामयाबी की तकरीब, इंतजामिया कैदन की शिरकत, मलीर जेल में अखबारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते तकरीब थी, पाक फौज के भेटा पेश, सेंट्रल जेल लाड़काणे में भी मेयर का हक की कामयाबी जो जश्न मल्हायो वियो, जेल इंतजामिया कैदन पारा पाक फौज से बधी जो इज़हार कयो वियो।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
5: तो पोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: हाँ, गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पो हाने खणो फोन ऐं पेंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
5: जी हाँ, 2315-2575-786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: It's 10:30 AM. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे चार गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डीप स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डीप स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल.
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी.
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी. ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230.
5: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो. सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4.
6: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
5: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल.
5: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन.
6: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलाइण लाए
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा.
6: 03132525786.
5: जी हाँ 2311-5525-786.
6: GFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़.

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: सिंध के माथे का झूमर,
2: ZFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ ZFM 88 नेटवर्क ते।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by White Nut Ganesha
2: Ma. Mohammed Umar Bughio Institute of Nursing and Allied Health Sciences Meerwa Road
3: Elana ki tawqqaat se kam rates mein to abhi raabta kare marketing manager mobile number 0332274301 or 0
4: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
5: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
4: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: करने के लिए मैं हाजिर हूँ यकीन करने लेकिन मेरा भी ठीक नहीं है और जो है बस आप लोगों से बात करती हूँ तो थोड़ा होता है कि यार आप लोग वेट कर रहे होंगे और आप पास जाना चाहिए तो अच्छा लगता है बहुत ज्यादा तो ये बात मैंने आज जानी है कि जो अंदर से टूटे हुए लोग होते हैं वो दूसरों को खुश करने के लिए पूरे दिलो जान लगा देते हैं तो ये बात मुझ पे आज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सूट कर रही है ये तो आप भी देखिए मुझे और मेरी आवाज से मुझे बता देंगे तो आज एक नया सेगमेंट स्टार्ट होने लगा है तो जैसा कि आप सुन रहे हैं GFM 88 सखर तो जी आज का नया सवाल मेरे पास आप लोगों के लिए मौजूद है और सवाल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपने मुझे ज्वाइन करना है और जो ज्वाइन करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे तो आपने परेशान नहीं होना मोबाइल को उठाना मोबाइल को उठाते साथ टाइप करना है GAFM 888 पे आपने SKR लिख के आपने मुझे लाइव SMS कर देना है 888 पे SKR लिख के अपने प्यारे से सिटी का नाम के साथ अपने नाम के साथ आप मुझे SMS कर सकते हैं मुझे ज्वाइन कर सकते हैं मेरे सवाल को सुनने के बाद उसका जवाब दे सकते हैं और जवाब देने के साथ साथ अपना एक फरमाइशी सॉन्ग भी लिख सकते हैं अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा जैसा कि मैंने लास्ट वीकेंड भी बताया था तो मैं आपका सॉन्ग प्ले करूंगी तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो जवाब था वो राइट है ओके सवाल के जवाब के साथ आपने गाना पसंद का भेजना है मुझे और जो मुझे फेसबुक से सुनना चाहते हैं फेसबुक पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए आपने फेसबुक ऑन करना है GAFM 88 का पेज आपने ओपन करना है मेरे नाम का फ्लायर आपको दिख जाएगा संविता आरजे सना के नाम से आओ बात करें मैं तो बिना देर किए आओ बात करें और आओ बात करें ओके तो यहाँ पर सवाल मैं आपको बताती हूँ सवाल मेरा ये कि आपने मुझे बताना है आज कि वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं पर उसे खाते नहीं है वो कौन सी चीज है जिसे हम खरीदते हैं खाने के लिए पर हम उसे खाते नहीं है तो आपने पता लगाना है और मुझे बताना है और अपने बताने के साथ साथ एक सॉन्ग का नाम भी जरूर लिख के भेजना है तो अगर वो जवाब आपका ठीक होगा तो मैं सॉन्ग प्ले कर दूंगी ओके जी बिना देर किए करते हैं स्टार्ट तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है हमें किसने ज्वाइन किया है

तो ये सुन रहे थे यहाँ पर हम लोग फैजा अली के बाद में सॉन्ग, जैसा कि आपने सुना है बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है उनका, न्यू न्यू सॉन्ग आया था तो मैंने सोचा कोई भी सॉन्ग मैं सुनती हूँ तो हमेशा आप लोगों के साथ ही कोई भी नया सॉन्ग होता है जो मैं अकेले नहीं सुन रही होती। तो ऐसा ही आज भी है कि मैंने उनका सॉन्ग आपके साथ प्ले किया था।

तो मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग अभी तक उठे नहीं, आप लोगों की अभी तक सुबह नहीं हुई, तो ऐसा ना करें, जल्दी जल्दी उठें और टाइम कम रह जाता है हमारे पास बात करने के लिए। तो फिर आप लोग मुझे बोल रहे होते हैं कि यार अभी टाइम जो है बहुत कम है, आप सॉन्ग प्ले नहीं करती, तो आप लोगों की शिकायतें बढ़ जाती हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों इस तरीके से कोई शिकायत बढ़े, तो आपने क्या करना है, मुझे टाइमली ज्वाइन कर लेना है और टाइमली मुझसे बात कर लेनी है।

अच्छा जी, अब्दुल रजाक मुझे जवाब देते हुए कहते हैं कि सवाल का जवाब का आंसर है बर्फ। तो और आपने कोई सॉन्ग तो मुझे नहीं बताया, सॉन्ग मुझे बताया ना ताकि मैं प्ले करूंगी तो आप समझ जाएगा कि आपका ठीक है, प्ले नहीं करूं तो समझ जाएगा कि ठीक नहीं है। तो सॉन्ग का नाम मुझे जरूर बताया करें, अभी आपने मुझे जवाब दिया तो उसके सॉन्ग भी भेजें। अगर मैं प्ले कर दूं तो समझ जाइएगा कि ठीक है, और ना करूं तो समझ जाइएगा ठीक नहीं है। ओके जी, जवाब के साथ आप मुझे सवाल का जो है कोई भी सॉन्ग जरूर भेजा करें, क्योंकि सवाल का जवाब मुझे देते हैं तो फिर पता लगाने के लिए सॉन्ग भेजना जरूरी है। अगर मैं प्ले कर दूं तो आप लोग समझ जाएगा कि भाई जवाब आपका ठीक है। तो ठीक है जी, आप मुझे कोई भी सॉन्ग का नाम बता दें अब्दुल रजाक। और उसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद हफीज, कहते हैं कि ईदगाह जनूबी बकर से मोहम्मद हफीज उल रहमान मुल्तान से गुल यासिन नाज वेलकम टू द शो, थैंक यू सो मच। और कैसे हैं आप मोहम्मद हफीज, आपने मुझे ज्वाइन किया, अच्छा लगा कि आपने मुझे ज्वाइन किया, ऐसे आपने हमेशा मुझे संडे संडे ज्वाइन करते रहना है। और बात करें मैं होती हूँ आपके साथ पूरे पूरे दो घंटे के लिए, तो अगर आपने मेरा सवाल नहीं सुना तो मैं अपना सवाल अभी आपको रिपीट करते जाते हैं, फिर हम उसके बाद जाएंगे छोटे से शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ। तो जी, मेरा सवाल ये था आपसे कि आपने मुझे बताना है कि वो कौन सी चीज है जो हम खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन उसे खाते नहीं है। हम उसे खाने के लिए तो जरूर खरीदते हैं पर हम उसे खाते नहीं है, तो पता लगाना है और मुझे बताना है कि वैसी कौन सी चीज है। तो पता लगाएं और

0: एलोवेरा
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी, आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
6: 90.4। पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
4: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक अड़ो FM रेडियो आए
6: जेको हले तो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: आई हाँ, गोठन शहरन ऐं परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
6: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
6: 03132525786।
4: जी हाँ, 2315-2576।
6: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना
1: फातिह मेहरान सिंध की एक और पहचान
0: DA FM 88 नेटवर्क
1: सिंध की आवाज़।

तो जी वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग सोनू दे चूरी सॉन्ग। तो यकीन आपको सॉन्ग भी बहुत अच्छा लगा होगा। और ब्रेक के से हम लोग वापस आ गए हैं। और वापस आने के बाद देखते हैं अभी हमारे साथ कौन मौजूद है, हमें कौन कौन ज्वाइन करता है, और ये भी देख लेते हैं।

गुलाम कादिर बटी फेसबुक पे हमें ज्वाइन करते हैं और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी, आपका प्रोग्राम तमाम बेहतरीन है, फ्रॉम मेट्रियाडी से, प्लीज सॉन्ग दीवानगी। अच्छा जी, जरूर हम सॉन्ग सुनाएंगे आपको, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अगर आपने सॉन्ग बताया तो एक जवाब का रिप्लाई भी कर देते तो क्या ही बात थी, और पता चल जाता कि आपका जवाब ठीक है या नहीं। खैर, आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए हैं और ऐसे कैसे हम आपको जाने दें। तो आपने मुझे ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा, ऐसी आओ बात करें। मैं आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक रहता है आपका, और मेरा साथ आओ बात करें मैं तो जी जरूर सुनाएंगे आपके पसंद का सॉन्ग भी। और उसके अलावा देख लेते हैं कि हमारे साथ मशहूर अहमद हमें सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि आरजे सना जी, सवाल का जवाब है चम्मच। और ओके जी, और जी जी जरूर, आपने मुझे सॉन्ग पहले ही बताया था, हमने आपका सॉन्ग प्ले कर दिया था अभी भी, जरा कुछ फरमाई थे जो कि फायज़ अली की आवाज़ के अलावा कोई सॉन्ग है तो वो भी आप मुझे टाइप करते हैं, जवाब ठीक होगा तो हम जरूर आपका सॉन्ग प्ले कर देंगे, और ताकि आप समझ जाइएगा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक है, अगर प्ले ना करें तो समझ जाएगा जवाब ठीक नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे मौजूद है वही दुन्नड़। वही दुन्नड़ कहते हैं जवाब बर्तन सॉन्ग, जवाब बर्तन सॉन्ग, मेरा बाबू छेल छबीला मैं तो नाचूंगी। अच्छा जी, जरूर आपने जो सॉन्ग बताया है और अगर आपका जवाब ठीक होगा तो ये सॉन्ग प्ले हो जाएगा, आपने करना है लास्ट तक, एंड तक, मतलब वेट, और देख लेते हैं कि आपका सॉन्ग प्ले हो जाएगा।

0: program is brought to you by
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
4: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
8: सुनते रहो GFM 90.4
9: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
9: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125252786
6: जी हा 2315525786
9: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़

लेकिन मैं चाहती हूँ कि उससे पहले क्यों ना हम लोग एक अलग से ओल्ड मैशअप सुने जो मेरी पसंद से हो. पहले हम वो सुनते हैं, उसके बाद सुनते हैं दिले उम्मीद तोड़ा है किसने. ओके जी, तो मैंने कर दिया प्ले और ये सॉन्ग आपको सुनने वाला है अभी. रहे मेरे साथ और कर दिया है सॉन्ग को मैंने प्ले, बहुत ही मजा आने वाला है. तो

तो जी यहाँ पर सुन रहे थे हम लोग को हिस्ट्री मेशअप, और यकीनन आप लोग को भी बहुत अच्छा लगा होगा मेशअप। तो जी और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जैसा कि आपको बताया कि अगर आप लोग उठ जाते हैं मुझे ज्वाइन करने की कोशिश करें, परेशानी हो रही होगी, तो परेशानी क्यों होने की कोई जरूरत नहीं है। आपने क्या करना, फेसबुक सिंपल ऑन करनी है, GFM88 का पेज आपने ओपन कर लेना है, मेरे नाम का प्यार आपको दिख जाता है, मेरा नाम प्यारा सा आपको दिख जाता है, और उसके साथ मेरी प्यार से आवाज सुनने के साथ आपको देर किए बगैर ही आपने मुझे कमेंट करना होता है कि भाई आप मेरे साथ मौजूद हैं और मेरे सवाल को आपने सुन लिया है। अगर नहीं सुना है और जिसे मुझे अभी ज्वाइन किया है, तो उसके लिए मैं अपना सवाल आपको रिपीट कर लेती हूँ। तो जी मेरा सवाल ये था आप लोगों को, सिर्फ जस्ट ये बताना था कि यार वो कौन सी चीजें जो हम खाने के लिए खरीदते तो हैं पर हम उसे खाते नहीं हैं, तो ये लगाना था पता, और अभी तक आपने मुझे नहीं पता लगाया। और जिसने भी अभी तक जवाब दिया है, जिसके पसंद के अभी तक सॉन्ग प्ले नहीं हुए हैं, तो उसका मतलब है उसका जवाब बिल्कुल ठीक नहीं है। और ऐसा ही है ना, बिल्कुल अगर सवाल बिल्कुल ठीक होगा तो आपका यकीनन सॉन्ग भी हम जरूर प्ले कर देंगे। अच्छा जी यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें SMS पे किसने ज्वाइन किया है और कौन हमें SMS करता है। हमें ज्वाइन करते हैं सक्कर से याली मदद, आपका शो सुन रहे हैं, सदाकत हुसैन मीरानी साहब, टेलर मास्टर अली अकबर शेख एंड शौकत शेख बच्चल शाह मियानी सक्कर सही है, क्या बताया था आपने, सदाकत हुसैन कैसे हैं आप सब, लास्ट संडे की तरह आज भी तो ऐसे ही आपने हर संडे मुझे ज्वाइन करते रहना है। आओ बात करें, मैं रहती हूँ मैं आपके साथ और आपका मेरा साथ 1 बजे से सुबह 11 बजे से सवेरे 1 बजे तक। 2 घंटे बहुत होते हैं बात करने में, लेकिन आप लोग तो बात ही नहीं कर रहे होते, आप लोग सब कुछ छुपा रहे होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ चुरा लूंगी, छुपा लूंगी, आपसे छीन लूंगी, तो ऐसा नहीं है जी, आप अपने घर में हैं, मैं अपने, तो ऐसा ही होता है कि बस आप लोग बता देंगे तो थोड़ी खुशी होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर से टूटे हुए लोग आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यानी कि मैं इतना तो अंदाजा आप भी लगा सकते हैं, इतना तो समझदार आप खुद भी हैं, तो जी इतना तो नहीं करें ना। और हमारे साथ मौजूद हैं सक्कर से कहते हैं अजीम चन्ना फ्रॉम और साले पर जवाब खाने वाला चम्मच प्ले किसी दर्द, कहते हैं कि जवाब खाने वाला चम्मच प्ले किसी दर्द मंद के काम आ, किसी डूबते को डाल दे, सलाम सब सुनने वालों को। ओके जी वालेकुम सलाम, और यहाँ पर हम लोग सॉन्ग जरूर प्ले करेंगे आपका जो आपने मुझे बताया है, अगर आपका जवाब ठीक होगा तो रहेगा मेरे साथ, आपको वेट करना पड़ेगा ना पूरा, ताकि सुनने को पता चल जाएगा आपके पसंद का सॉन्ग चला है कि नहीं है। तो उसके अलावा भी हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं कहते हैं विलेज गोड नबी दाद बमड़ो नारो से इमाम डिनो बमड़ो, सवाल जो जवाब चम्मच यान प्लेट प्लीज प्ले शमन शमन अली का करो वादा कब आलो, अच्छा कब आओगी, करो वादा कब आओगी। ओके जी ओके जरूर जरूर, इतने सारे सॉन्ग्स हो गए हैं भाई राइट आंसर के साथ साथ, तो प्ले करना तो बनते हैं, तो जरूर जरूर हम जरूर प्ले

लेकिन सॉन्ग सुनने से पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हमारे पास वैसे ही एक टाइम बहुत कम हो गया, 2-3 मिनट रह गए हैं न्यूज ब्रेक की तरफ जाने के लिए, क्योंकि हम जाएंगे न्यूज ब्रेक की तरफ और न्यूज ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो वापस आके मैं कर दूंगी आप लोगों के पसंद पसंदीदा सॉन्ग। तो सुनने के लिए रहना पड़ेगा मेरे साथ और कहीं जाइएगा नहीं तो आपके सॉन्ग चल जाएंगे, आपकी जगह कोई और सुन लेगा, फिर आप बोलेंगे आपने हमारे सॉन्ग प्ले नहीं किया। तो रहना पड़ेगा मेरे साथ और मजे मजे के सॉन्ग सुनने के लिए, क्योंकि देखिए ना सॉन्ग के अलावा अगर हम लोग से सॉन्ग सुने तो भाई न्यूज का भी तो पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आप लोगों से मेरे साथ रहते हैं तो ये चीजें तो मुझे पता लगानी पड़ेंगी ना भाई। तो जी एक और देख लेते हैं हमारे साथ कौन हमें ज्वाइन करता है, हमें ज्वाइन करते हैं SMS करते हुए, कहते हैं स्वीट सन्ना हम बर्तन खरीदते हैं और खाते नहीं हैं, आई वसीम। ओके आपने कोई सॉन्ग का नाम है तो वो भी शेयर कर दें, अगर आपका जवाब बिल्कुल ठीक होगा तो हम आपका सॉन्ग भी साथ में प्ले कर सकते हैं। तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो है ये सॉन्ग मतलब आपका जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक था। और उसके अलावा हमारे साथ

0: अच्छा, जब हम लोग न्यूज से वापस आएंगे, न्यूज से वापस आने के बाद यार मैं एक और अपना सवाल आप लोगों से पूछूंगी, उसका जवाब आपने मुझे देना है कि इसका हल मैं कैसे निकालूं। तो जी यहाँ पर टाइम हो गया है हमारा न्यूज ब्रेक के, जब जाने का वापस आएंगे, वापस आके करते हैं बाकी की बातें, तो रहिएगा मेरे साथ।
1: Express PM. This time check is brought to you by
2: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
3: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.

हकवारी जंग रुगो बिन मुल्कंज जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बैनर मुड़स की कामयाबी के साल पूरो थे जीएचक्यू में कोठायल तकरीब के खिताब। फील्ड मार्शल सर आसिम मुनीर चो तो हकवारी जंग 7 मई की विच वाई रात का 10 मई दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमाइण की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई। बाजी में भी दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ तो क्या इल्जाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारत जारत की मुंह तोड़ जवाब दिनों पो। पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसो पो। ऑपरेशन बनाल मरसूस के एक साल मुकम्मल थे जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब कदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चो दुश्मन जानी वे त पाकिस्तान खिलाफ अगत अगराई जा असर इंतहा खतरनाक ए तकलीफ दीदड़ हूं। भारत जो ख्वाब है तो पाकिस्तान की अस्करी जारत ए सफारती खिलाई जो निशानो बढ़ाए खिते में ताकत जो तवाजुन तब्दील करे यो ख्वाब उन कद ए सलाहत का घणो है जो को पाकिस्तान कदें भी कामयाब थे नी फतेह मिसाल निशान दुश्मन के फौजी हथकन के कामयाबी से निशानो पढ़ाया आवाम ए कौमी क्यादत जो पैगाम है मुल्की खुद मुख्तियारी सरहदी सलामती ए कौमी वकार से को भी ठा काबिले कबूल ना है। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ए माली नुकसान की कीमत ईंदड़ वक्त तदा कन्द रहा।

0: आखिरी जंग में भारत जी अपर्तनाक शिकस्त के एक साल मुकम्मल। अज समूरे मुल्क में फतेह जश्न मल्हायो पियो वञे। जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सिस फील्ड मार्शल कासिम मुनीर तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत। फील्ड मार्शल कासिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीदन की यादगार से हाजिरी। गुलदस्तो रखियो ए फातिहखानी कई। आईएसपीआर पारा जारी कल बयान में चयो है तो कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहरी चैलेंजन के मुंह डेण लाय मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावरानी सलाह जो सबूत है। अखिली जंग में कामयाबी अवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है।
1: आप सुन रहे थे जीएएफएम नेटवर्क।
2: आप सुन रहे हैं जीएएफएम 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
3: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो? हाने वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए होजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज।

और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं प्रोग्राम में, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तरीके कार नहीं जानते, तो आप अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप करेंगे एल आर के सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 888-1 पर। इसी के साथ साथ अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जनाब जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है। ओके जी, जी लाड़काना FM 88.8 आप सर्च करें तो करेंगे ना तो आपको हमारा पेज बस आने मिल जाएगा, वहां पर आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए और जल्दी जल्दी से दोस्तों के साथ जो है ना पोस्ट को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। और मुझे बताइए सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर स्टेप आपको क्या लगता है कि क्या है, कौन सा है? ओके जी, ओके जी, सो स्किन केयर जो है ना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी एक चीज होती है, क्योंकि आजकल के दौर में तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी ये चीज इग्नोर करनी चाहिए, स्किन केयर किया करें बहुत ही अच्छी बात होती है। और इसी के साथ साथ अगर आप स्किन केयर नहीं करते हैं तो आज से ही आपने ना स्किन केयर स्टार्ट कर लेनी है, क्योंकि जब आप अपने चेहरे का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये जो आपके चेहरे की स्किन खराब हो जाएगी ये ठीक कैसे होगी? तो बिल्कुल जी अपने चेहरे का ख्याल रखिए। और साथ साथ आज जो है प्रोग्राम के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में। ये जो पहला घंटा होने वाला है प्रोग्राम का, इसमें आप लोगों को व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, और जो दूसरा घंटा हम आप लोगों के साथ मुखातिब होंगे तो उसमें आप लोगों को डी स्किन के बारे में बताया जाएगा। तो जितने भी लोग हैं अगर आप व्हाइट एश के प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो भाई फायदा तो दोनों सूरत हाल में आप ही लोगों का है। तो बस आप ऐसा करेंगे जो प्रोडक्ट आपको जो है ना अट्रैक्ट करे, जिस प्रोडक्ट में आपको लगे कि ये मुझे लगाना चाहिए, ये मेरी टाइप का है, तो बिल्कुल वही प्रोडक्ट आप परचेज करेंगे। और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और बहुत ज्यादा ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों से सुननी है, क्योंकि ये बातों का और मोहब्बतों का सिलसिला जारी और सारी रखा जाएगा पूरी पूरी 3 बजे तक। सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। टाइम हो जाता है जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आऊंगी। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग White Age and the Skin Beauty Show is sponsored by White Age Beauty Products and the Skin Beauty Products.

0: के ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिससे मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
2: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230। केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो?
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल।
2: ऐं हा, गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03125252786।
2: जी हा, 2315525786।
5: GFM रेडियो नेटवर्क,
2: सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 247-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस
1: अपना शहर अपना घर माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।
8: बेहतरीन रिजल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज़। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंडी इज गिविंग ब्यूटी टू यू। ओके जनाब, सो इस प्रोग्राम में आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जा रहा है। ओके जी, तो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछा है, जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो आज आप मुझे बता रहे हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्किन केयर स्टेप आपको क्या लगता है कि कौन सा है, यानी कि जब आप स्किन केयर ना स्टार्ट करते हैं, स्किन केयर करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो होता है वो आपकी नजर में कौन सा है, ये आज आप मुझे बताएंगे। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी से प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए, आपके मैसेजेस हैं, आप लोगों के कॉमेंट्स हैं जो बिल्कुल मुझे मिल रहे हैं, मिलती जा रहे हैं। जल्दी जल्दी से पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए और उसके साथ साथ शेयरिंग जो है ना वो बढ़ाते जाइए। ओके जी, यहाँ पर आप लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो लोग हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं उनको जरा शामिल प्रोग्राम रख दूं, फिर तसल्ली से आप लोगों को जो है ना व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पर अनवर भाई हमारे साथ मौजूद है, अनवर भाई आपको वेलकम करते हैं। लिखते हैं, जिंदगी ने एक दिन मौत से पूछा कि लोग मुझसे मोहब्बत और तुमसे नफरत क्यों करते हैं। मौत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अस्सलाम वालेकुम, तुम्हें खूबसूरत झूठ हो और मैं एक कड़वा सच हूँ। अच्छा, क्या बात है। और अनवर भाई मुझे नहीं मिली जी और आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है और व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स आपको पसंद आ रहे हैं, क्या बात है जी। हिदायतुल्लाह अहमद आनी हमारे साथ मौजूद है, वेलकम। सनाला ब्रोई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। जाहिद अली बुर्दी हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी। मोहम्मद जमान, हेलो। सिराज अहमद हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, कहते व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास खामठी आयो आई हाँ क्रीम जी शाह गाल कजे रमजान कुंभर घर में इस्तेमाल करे पे चलें जी, जबरदस्त। अगर आप इस्तेमाल करें तो बिल्कुल ऐसी मुझे बता दिया करें। उसके अलावा तारिक हुसैन लोहर भाई हमारे साथ मौजूद है, तारिक भाई आपको भी वेलकम, पता नहीं क्या आपने कमेंट में लिख दिया है। और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ सिराज, आपने क्या कहा है, बहुत दिनों के बाद आप हमारे शो सुन रहे हैं जी, बहुत शुक्रिया, वेलकम करते हैं आपको, बस रोजाना आप हमारे प्रोग्राम में आ जाया करें, आप लोगों को खूबसूरती की बातें बताती हूँ और साथ साथ आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, तो खूबसूरती की बातें भी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल के दौर में देखा जाए तो कौन आप लोगों को इस तरह की बातें बताता होगा जिसमें आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी और साथ साथ आपकी खूबसूरती जो है ना वो हमेशा प्रोटेक्ट भी रहेगी। और अगर गर्मी के मौसम में जो है ना कई मरतबा लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन से प्रोडक्ट का इंतखाब करना है और कौन से प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर सकते हैं गर्मियों का सीजन में खास करके, तो गर्मियों का सीजन जब भी आए तो आप लोगों के जहनों में ये बात आए कि व्हाइट एज वालों की लवली क्रीम मौजूद है मार्केट में। और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताते चलूं कि ये व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ये सिर्फ एक लवली क्रीम नहीं है, बल्कि इसके अंदर आप लोगों को सनस्क्रीन भी मिल रही है जो कि आप लोगों को खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो प्रोटेक्ट भी करने वाला प्रोडक्ट है। अगर आप धूप में काम करते हैं या फिर आपका कोई इस तरह का काम है जो कि आपको बाहर धूप में जाना पड़ता है, या फिर लड़कियां हैं, लड़के हैं जो कि कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, इस तरह की अगर सिचुएशन आपकी जिंदगी में भी चल रही है तो आपने व्हाइट एज की लवली क्रीम का इंतखाब जरूर करना है अपनी जिंदगी के अंदर। रोजाना सुबह और रात अगर आप मुनासिब मकदार में इस्तेमाल करेंगे, अगर आप चेहरे पर लगाते हैं, गर्दन पर लगाते हैं, हाथों पैरों पर लगाते हैं, तो आप लोगों को जो है ना बहुत ही अच्छे से रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। रेडियंट जनाब अल्ट्रा वाइटामिन के साथ तैयार शुदा है जिसके अंदर आपको विटामिन बी मिलता है, विटामिन 3 मिलता है, विटामिन सी मिलता है और विटामिन ई की ताकत के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विटामिन्स जो कि आप लोगों के चेहरे को निखारेंगे और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत बना देंगे। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर किसी के लिए है, इसे हर एज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि भाई एज लिमिट से इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, आप टीनेजर्स भी लगा सकते हैं, बूढ़े भी लगा सकते हैं, जवान भी लगा सकते हैं, बिल्कुल से ये कमाल है व्हाइट एज लवली क्रीम का। इसके साथ साथ अगर बात की जाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम की, तो बिल्कुल जनाब व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है तो ये जनाब बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि एवोकाडो और एलोवेरा से तैयार शुदा है, ये दोनों चीजें आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, आपकी जल्द को फ्रेश और गोरा बनाती है, साथ साथ हर किस्म के नुकसानदार असरात से आपको महफूज रखती है, आपके चेहरे पर झुर्रियां हो,
داغ دھبے ہو, ان تمام تر چیزوں کو ختم کرتے ہیں اور آپ کے چہرے پر نکھار لانے کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو وائٹ ایش بیوٹی کریم, اگر آپ نائٹ کریم اچھی والی لینا چاہتے ہیں, اچھی والی نائٹ کریم استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو وائٹ ایش کی بیوٹی کریم آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وائٹ ایش کا جو ہے نا وہ بیوٹی سوپ بھی مل رہا ہے, اور وائٹ ایش کا بیوٹی سوپ آپ استعمال کریں گے ساتھ ساتھ, جو لوگ اگر سوپ نہیں لگاتے فیس واش لگاتے ہیں تو وہ وائٹ ایش کا وائٹامن سی کا فیس واش لگا سکتے ہیں. بالکل جی, فیس واش بھی ہے اور سوپ بھی ہے, بس پسند آپ لوگوں کی ہوگی کہ آپ کیا استعمال کریں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ وائٹ ایش میں اور بھی مزید بہت سے پروڈکٹ ہیں, جیسے کہ آپ لوگوں کو ڈاکٹر پمپل کا ٹیوب مل رہا ہے. اور ڈاکٹر پمپل کا جو ٹیوب ہے نا, اس کی کیا خاص بات ہے؟ اس کی خاص بات یہ ہے کہ اسے وہ لوگ استعمال کریں گے جن کے چہرے پر ایک نیز آ چکے ہیں, ایک نیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں, تو ڈاکٹر پمپل کا ٹیوب لگائیں گے جو کہ وائٹ ایش کمپنی کا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ فل آیورویدک فارمولا ہے, اور یعنی کہ اس کے اندر ساری اس طرح کی چیزیں ایڈ کی گئی ہے جو کہ آپ لوگوں کی اسکن پر جو آئل کافی زیادہ جمع ہو جاتا ہے, یا پھر آپ کے چہرے پر جو ہے نا وہ ایکنی کافی زیادہ بڑھ چکے ہیں. ایکنی بھائی ہر طرح کے ایکنی اگر آپ کے چہرے پر, یعنی کہ چھوٹے والے ایکنی ہیں, موٹے والے ایکنی ہیں, لال ایکنی ہیں, یا پھر وہ گند والے ایکنی ہیں, ہر طرح کے ایکنی کا خاتمہ کر دے گا, کیونکہ اس کا نام یہ ڈاکٹر پمپل. یہ آپ کے چہرے پر جتنے بھی ایکنی ہیں, جتنے بھی پمپلز ہیں, یہ سارے ختم کر دے گا, اور وہ بھی گارنٹی کے ساتھ. تو آیورویدک فارمولا ہے, آپ ضرور ٹرائی کر کے دیکھیے گا. اس کے علاوہ ہاں جی, تو وائٹ ایش کا جو ہے نا وہ لوشن بھی موجود ہے, اور وائٹ ایش کا جو ہے نا ہیئر ریموور لوشن بھی موجود ہے. یہ تمام تر پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ آسانی کہیں سے بھی جا کر پرچیز کر سکتے ہیں, آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر ملنے والے پروڈکٹس. اور اس کے علاوہ اگر آپ اپنے قریبی جنرل سٹورز پر اویلیبل کرانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس نمبر ہے جو ہے 03-15-799-0595. اوکے جی, نمبر ڈال کیجیے 03-15-799-0595. یہ نمبر آپ ڈائل کریں گے, اس نمبر کے اوپر رابطہ کریں گے اور انہیں بتائیں گے کہ بھائی جان آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں وائٹ ایج کے پروڈکٹس, اور جو بھی پروڈکٹس آپ اویلیبل کرانا چاہتے ہیں, استعمال کرنا چاہتے ہیں, تو وہ آپ اویلیبل ایزیلی کرا سکتے ہیں. تو جلدی جلدی سے آپ اویلیبل کراتے جائیے, اور مجھے بتائیے کہ آپ کے قریبی جنرل سٹورز پر کون سے پروڈکٹ مل رہے ہیں اور کون سے پروڈکٹ ابھی تک نہیں مل رہے. تو جلدی جلدی سے آپ ان نمبرز کے اوپر رابطہ کیجیے اور اپنے ایریا میں اویلیبل کرائیے وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے آج آپ لوگوں سے سوال پوچھا ہے کہ آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اسکن کیئر جب آپ کرنے لگتے ہیں تو کون سا ایسا اسٹیپ ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اسٹیپ ہے, اور وہ کون سا اسٹیپ ہے آپ مجھے بتائیں گے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کیا کہہ رہے ہیں جی, نورس انتنیو بھائی ہمارے ساتھ ہی لاڑکانہ سے کہتے ادی گڈ آفٹر نون, ہیو اے نائس ڈے. بہت شکریہ بھائی, آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور کہتے ادی سانگ کی ریکویسٹ ہے. بالکل جی, کوشش کریں گے, لگائیں گے آپ کا گانا. درد دل ہمارے ساتھ موجود ہے, ہیلو وعلیکم السلام پیاری جان. اور اس کے علاوہ ہیں جی, اچھا علی اکبر بروہی بھائی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, سکرنٹ سے آپ ہمارا شو سن رہے ہیں, ویلکم جی. اور ہیں جی شاہنواز علی خاص کے لیے وعلیکم السلام. مریم علی جتوئی ہمیں سن رہے ہیں, بہت شکریہ. عدنان نور ہمارے ساتھ موجود ہے, عدنان آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ہیں

अच्छा ये बिजी इतना मेरे दिमाग के ऊपर चल गया है ना कि बस हर टाइम ये चल रहा है. और साथ साथ अदनान कहते आई थिंक हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही था. और स्मार्ट किशोर भाई कहते हैं हेलो हाय स्मार्ट हाजिर है अपने लबों पर स्माइल आने के लिए अपने लबों पर. चले ये भी कहते हैं कि इहा क्रीम डे नाइट लगाए सकजे थी इहा केड़ी ओ इन तो इलाही सारा प्रोडक्ट आयन मु समझो कोन तमा केड़ी क्रीम के बारे में पूछो पया. हिदायतुल्ला कहते हैं बिल्कुल जी गाने एंजॉय कीजिए. हजार खान जो ये हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम हजार भाई. अदनान कहते ओए होए आज इतने अरसे बाद बस कोशिश यही होती है कि हम जब भी आपको मिलें के तो पुराने अंदाज में मिलें. और किशोर भाई कहते हैं आज भी मैं टॉपिक पर बात नहीं कर सकता. क्यों नहीं करते बात आप टॉपिक के ऊपर किया करें भाई सवाब मिलता है. और उसके साथ साथ जो है ना पैनल की जाने बातें तो बहुत से मैसेजेस हैं पैनल की जाने भी पड़ेंगे और आपके मैसेजेस. लेकिन यहाँ पर गाना है तो मैं सोच रही थी कि जरा हम ये वाला गाना सुन लेते हैं और गाना बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाला है. और साथ साथ यहाँ पर आपके मैसेजेस में जल्दी से इसलिए रीड करती जा रही हूँ क्योंकि आप जानते हैं कि हम 2 बजे के बाद कॉल्स की जाने वाले हैं. कॉलर्स जो हैं वो जरा रेडी हो जाएं. 2 बजे के बाद आप लोगों की कॉल्स होंगी आप लोगों के साथ बातें करेंगे और आप लोगों से पूछेंगे बताइए जरा अगर आप स्किन केयर करने लगते हैं तो कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि आप लोगों का आपको लगता है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किन केयर में जो है ना ये स्टेप है. तो आप जल्दी से जरा इस चीज को समझ लीजिए और कॉल पर आएंगे तो टॉपिक को लास्ट में फॉलो कीजिएगा.

अच्छा हिदायतुल्लाह क्या कह रहे हैं, वैसे तुम इतना क्रीम के बारे में बताती हो कि बंदा बोलता है बस अभी जाएं और व्हाइट एज का। अच्छा व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स लेकर आए। अच्छा इतना पावर है मेरी बातों में, सच बताए। ओके जी, अरीबा हमें सुन रही हैं। अरीबा हेलो, वेलकम करते हैं आपको। इरम हमारे साथ मौजूद है। इरम आपको वेलकम हो गया, मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, आपका शो वेरी नाइस है। और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आज खरीद करूंगा। ओके बाजी, बिल्कुल जी खरीद कीजिएगा, हमें बताइएगा आपको रिजल्ट कैसे मिल रहे हैं। और गोच मोहम्मद तैयब थेबू, हाँ हबीबुल्ला थेबू हमारे साथ ही, तवा जो शो वेरी नाइस आए। सलाम तवा के, वालेकुम अस्सलाम। और ये कशफ कहती है अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं कैसी हैं। और कहती आप ही, मैं भी व्हाइट एज क्रीम एंड फेस वॉश एंड लवली क्रीम लेकर आई हूँ कल मार्केट से, और लगी बहुत मजे की है। और मैं डॉक्टर पिंपल्स वाला ट्यूब भी साथ में लेकर आई हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ऑयली है। आप अच्छा किया ना मैंने, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा किया है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा किया आपने।

जो लोग हमारे साथ फेसबुक पर मौजूद हैं, पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइएगा, अच्छी ही ना। और चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे बेटा सिडो, कैसी हैं आप? शो इज गोइंग ओके, शो तो अच्छा जा रहा है, बाकी सुनने वाले ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। और कहते हैं कि बिल्कुल जी, आप कोशिश कीजिएगा कि आप वाइट एश के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, वो परचेज करें और फिर इस्तेमाल करें और फिर हमें बताएं कि आपको रिजल्ट्स क्या और कैसे मिल रहे हैं। और उसके अलावा जो आपने गाने की फरमाइश कर दी है, ओके जी। और ये है प्रिंस अहमद अली रिंद फ्रॉम अहमद आबाद, वालेकुम असलाम पाकिस्तान बागार में। स्वीट शो प्लीज, रहमान मुगल का कोई भी गाना प्ले कीजिएगा, आई ट्राई। अच्छा ये कहते हैं, सलाम सिदरा मुस्कान, केड़ा हाल आहिन, खुश आयो अदीमा अवां जो प्रोग्राम वडी शौक सा बुधा पयो, बुधा पई, अच्छा सॉन्ग जरूर प्ले कजो, मां अवां जी दोस्त आहां, अवां जी भेण सुगरा जमाली, नंडो अली हसन जमाली आहे, विलेज रईस मोहम्मद हसन जमाली, आशफियाबाद नवाब शाह, प्लीज प्ले अमीरा बेगम मेकू, अच्छा चले मैं बिल्कुल कोशिश करूंगी। हमारी प्यारी दोस्त सुगरा जमाली आपके लिए गाना लगाएंगे, ठीक है? लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगी, कब करेंगी और कौन से प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगी, कौन सा यानी के प्रोडक्ट लगाने वाली है। अच्छा बाबू अदील अबड़ू हमारे साथ मौजूद है, ओके।

बहुत ही पहले से गाना आप इंजॉय करें और साथ साथ प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे पूरी पूरी 3 बजे तक. प्रोग्राम है व्हाइट एज एंड जी स्किन ब्यूटी शो. स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के दावन से. ले दें आप न्यूज ब्रेक, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है. वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं, बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा. मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग 88.8 FM. सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए.

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
3: ऑपरेशन पैरानॉर्मल मोटर्स जी कामयाबी के साल पूरो थियण ते GHQ में कोठायल तकरीब के खिताब फील्ड मार्शल दरास मुनीर चयो त हकवर जंग 7 मई जी विच वारी रात खां 10 मई ते दुश्मन असांजे क़ौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई. मई 2025 जी जंग खां ओचितो ईंदड़ जंग न हुई. मार्च में बि दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद हथ थोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई, पर हक़ जी जंग में भारत जारत जी मुंह टोड़ जवाब ॾिनो पियो. पाकिस्तान दुश्मन खे हर भेरे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो. ऑपरेशन बनारस मुड़स खे हिकु साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़द ख़ासि तकरीब मार्शल आसिम मुनीर चयो दुश्मन ॼाणी वठे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा. भारत जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जारत ऐं सफ़ारती अकेलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे. इहो ख़्वाबु हुन जे कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे, जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो. फतह मिज़ाइलनि ऐं पाक फिज़ाए जे शाहिननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो. आवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वकार ते को बि ठाह क़ाबिल क़बूल नाहे. भारत जंग नतीजे में थियल जाल वक़्तनि
2: ते आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज. अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत यकजहती का पैगाम यहां वहां. GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज.
5: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: दिस प्रोग्राम इज़ ब्रॉट टू यू बाय।
0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं जी एफ एम 88 नेटवर्क. हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोर और मीरपुर खास मटियारी सकरन बेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो.

ओके सो कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं मुझे बताते जाइए, और इसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो जनाब अपने होने का एहसास दिला दिया करें। आप हमें मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कॉल्स भी कर रहे हैं। तो मैंने आज के प्रोग्राम में आप लोगों से सवाल पूछ लिया, सिंपल सा सवाल पूछा जो कि मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ नहीं आया है। मुंह का सवाल पूछवाए थे जिन तमाम पानी स्किन की हिफाजत करण चाहिंदा आयो, स्किन जो ख्याल रखना चाहिंदा आयो, तो कड़ा अड़ा जी ना टिप्स हूं या कड़ियों अड़ियों चीजों होंदियों आय जी तव लगे तो हि चीजों अगर असें स्किन केयर में एड कदी तो असि स्किन केयर जो अना बेहतर थी सके या जो तक लगे तो हि चीजों असि स्किन केयर के लिए जो सफा इम्पोर्टेंट है। सो उन बारे में तुम मुख्य बुधा पाया गडो गड तुम मैसेजेस जैसे पढ़ा कॉल्स भी कुछ तुम पिक कदी। लुबी असा ज्वाइन कर चुकी है, लुबी कहती है सलाम अलैकुम सिरु जाने क्या हाल है, मैं भी आके साथ साथ नाइस शो कोई भी अच्छा सा सिंधी सॉन्ग मेरे नाम कीजिएगा। ओके जी आज गाने वैसे ही मैंने अच्छे वाले लगाए हैं तो आप बस इंजॉय करते जाइएगा। और उसके साथ साथ पैनल की जाने बातें हैं तो पैनल पर भी काफी मैसेजेस हैं। ओके जी सो हमारे साथ हैं जी अजादार अहमद फ्रॉम लाड़काना। हाय सिद्रा मुस्कान, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स टू यू अ न्यू शो। सिद्रा उस दिन आपने ठीक से नहीं पढ़ा था मेरा मैसेज। अच्छा चलें ये ठीक है, मैं समझ गई सारी बात। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है, गर्मी आ ना गर्मी मथे चढ़ी वेंदी है समझो था। और उनके अलावा असरदार तमाके चौथा भली करे आया और ये लिखते हैं अर्ज किया है मैं लफ्जों से कैसे बताऊं कि कितनी खास हो तुम, जुदा होकर भी खत्म नहीं होता वो एहसास हो तुम, मेरी हैसियत होती तो तुम्हारी किस्मत संवार देता, एक दिल था जो तुम्हें दे दिया, हजारों भी होते तो तुम पर वार देता। गुलाम शबीर तुनियो हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम कंबर, कहते न्यू शो तो गुड है बहू, सच्ची बताएं बहू। वेलकम करते हैं आपका। और मल्हार अली हमारे साथ है फ्रॉम कराची, कहते फर्स्ट टाइम शामिल हुआ हूँ आपके शो में, सॉन्ग तो सुनाइएगा। ओके मैं सोच रही थी ये कौन सा गाना है, मैं सर्च करूंगी, मुझे मिल गया तो लगा देंगे, आज नहीं तो कल सही। ठीक है और बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू जी थैंक यू। और चाचा खालिद को आपने गाना डेडिकेट किया है। और उसके अलावा चाचा खालिद कहते हैं स्किन केयर में फेस वॉश देन लवली क्रीम नाउ बाय डी स्किन क्रीम एंड फेस वॉश टॉप कैंसर। ओके वेरी नाइस, चाचा को देखे सारी बातें बताए, ठीक है आप सीखा करें चाचा से कुछ। अच्छा ये कश्यप कहते हैं सुनो मेरी तो कॉल लगती ही नहीं है, क्यों भरा कब से नंबर लगा रही हूँ कॉल लगी नहीं रही है और कब लगेगी बताओ तो, अब ये मुझे पता होता तो अगते न हो जहाँ। और कहते हैं मेरी सिस्टर अलीजा फिजा माविजा एंड अम्मी और भाभी आपका शो सुन रही हैं और आपको सलाम दे रही हैं बहुत सारे, अब दुआ करो हमारी कॉल लग जाए, कल भी नहीं लगी थी आज भी नहीं लग रही और मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब आप ही मेरी दोस्त हैं और सिस्टर बन के रहना। ओके जी ओके तमाम जो हुकुम अखिन थे आई वी गाल तमाम जी कॉल लगी हुई नहीं, अगर तमाम ट्राई करना। चाचा खालिद कहते मेरी कॉल काश लग जाए नहीं लगती, हाँ ये वाकई है चाचा खालिद की भी कॉल कभी नहीं लगी है, वैसे मैं चाहूंगी कि आप लोगों की कॉल लग जाए मजा आएगा, कश्यप से बात करेंगे और उन लोगों से जिनकी कॉल कभी भी नहीं लगी है, तो आप कोशिश करें कभी ना कभी आपकी कॉल लग जाएगी। और ये मैंने अमीरा बेगम की आवाज में गाना लगाया है, ये जो एक हमारी प्यारी लड़की थी ना क्या नाम था उसका,

ओके जनाब, सो तव्हां जेको आहे न इस्तेमाल कयो पिया डी स्किन ब्यूटी क्रीम, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हांजे एरिया में नथी मिले, तव्हांजे सिटी में नथी मिले, तव्हांजे ॻोठ में नथी मिले, तव्हांजे शहर में नथी मिले, तव्हांजे पाड़े में नथी मिले, त तव्हां डायल कयो 03157990595 हिन नंबर ते तव्हां कॉन्टेक्ट कयो, इन्हनि खे चओ त तव्हांजे एरिया में अवेलेबल कराइनि डी स्किन ब्यूटी क्रीम, जीअं तव्हां इस्तेमाल कयो ऐं सोणा थी वञो। छो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जेका आहे इहा वाइटमिन ई बीट सां तयार थियल आहे, ऐं माइक्रो बीट्स बि हिन में मौजूद आहिनि, जेका सिर्फ़ ॿ ॾींहं इस्तेमालु कंदा तव्हां, यानी की ॿ रातूं अगरि तव्हां इस्तेमालु कंदा त तव्हांखे सफ़ा हीअं असली वी आई पी रिज़ल्ट ॾींदी। सो तव्हां बि ज़रूर इस्तेमालु करे ॾिसजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे, जेका बिल्कुलु तव्हांजी स्किन खे गोरो जटो बणाए छॾींदी, तव्हांजी स्किन खे सोणो बणाईंदी, तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बणाईंदी, ऐं तव्हां थी वेंदा सफ़ा असली बबू। अच्छा, डी स्किन ब्यूटी क्रीम सां गॾु तव्हांखे डी स्किन जो फेस वॉश बि मिली रहियो आहे। सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां अगरि परचेज़ कयो था त हुन सां गॾु तव्हां डी स्किन जो फेस वॉश लाज़मी वठिजो, ठीकु आहे। ओके जी, फेस वॉश बि जेको आहे न उहो बि ज़रूरी हूंदो आहे तव्हांजी स्किन जे लाइ, तव्हांजी स्किन केयर जे लाइ, समुझो था।

ओगरी दोदा अली हमें सुन रहे हैं। दोदा भाई आपको बहुत शुक्रिया। अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू। नूर सिंह भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। कहते हैं टॉपिक रात को क्रीम लगाना, ये स्टेप जो है ना बड़ा अच्छा है। ये अच्छा तो आपको लगता है लेकिन इम्पोर्टेंट है या नहीं ये भी आप मुझे जरा बताइए। और उसके साथ साथ हैं जी अच्छा फिरोज अली बरोई भाई हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। वीरूमल मेंगवार हमारे शो सुन रहे हैं, थैंक यू जी। बाय बाय गाने में ओके जी। फेसबुक वाले लोग जो हमारे साथ मौजूद है वो पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिए। इसे ये जो हमारा मैसेज है ना जो हम आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे या फिर डी स्किन का फेस वॉश इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत से लोगों तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए जो बात जरूरी है वो ये कि आपने बस इतना काम करना होता है कि आप हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, ठीक है। इससे ये आसानी हो जाती है कि हमारी ये जो पोस्ट है बहुत से लोगों तक पहुंचती है, बहुत से लोग ये चीज जानते हैं और ये चीज समझने की कोशिश करते हैं कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है।

ये वैसे सराइकी में गाना है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा। अच्छा दिलीप कुमार मेघवार भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया भाई जान। दर्दी दिल कहती है कि सबसे पहले चेहरे की सफाई का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि जिल्द साफ और फ्रेश रहे। बाहर निकलते वक्त सनस्क्रीन जरूर लगाया करें, सोने से पहले मेकअप लाजमी साफ किया करें। ये बिल्कुल सही बात है, कुछ ऐसी टिप्स वाकई होती है हमारी जिंदगी में, अगर आप फॉलो नहीं करते हैं या फिर अगर आप उन्हें जरा स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, तो आगे जाकर वो तमाम तर चीजें जो है ना वो आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचा देते हैं। अब जैसे कि कुछ लोगों की ये आदत होती है कि वो रात के टाइम ना फेस वॉश नहीं करते हैं, बस ऐसे ही सो जाते हैं, तो बस ऐसे ही सोना जो होता है ना आपकी जिंदगी में आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है, क्योंकि जब आप रात का फेस वॉश करते हैं ना तो उससे ये होता है कि आपकी स्किन क्लीन हो जाती है, आपकी स्किन पर जितनी भी डस्ट होती है, पोल्यूशन होती है या फिर जो जम्स वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, तो आपकी स्किन जो है ना वो ग्लोइंग हो जाती है। और अगर आप इस्तेमाल करना चाहें डी स्किन का फेस वॉश, उसे इस्तेमाल करें और रात के टाइम लगाएं अपना फेस वॉश जो है ना डी स्किन फेस वॉश से करेंगे, तब आप महसूस करेंगे कि भाई आपकी स्किन जो है ना वो और ज्यादा खूबसूरत होती जा रही है, और ज्यादा ग्लोइंग होती जा रही है, और ज्यादा हसीन होती जा रही है। तो जरूर आप ट्राई करके देखिएगा ताकि आप लोगों की खूबसूरती भी बढ़ती रहे और आप लोगों को भी अच्छा वाला निखार मिले। और अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, देन आपने डायल करना है 03-15-799-0595, ठीक है।

ओके जी, किशोर भाई लिखते हैं कि जिंदगी में मैंने बहुत गलतियां की लेकिन सजा वहां मिली जहां मैं वफादार था. ये थी दुआ, तुम अकेला ना हो. अच्छा, मोहम्मद जमान कहते हैं मुंह चयो ना कोई भी टॉपिक के फॉलो न करे सकंदो. छो भला टॉपिक मुंह जो दुखियो पुछो छा भला, टॉपिक तो इजी हुयो. बस गाल याद तमागे समझ में जगह गाल है ना, थोड़ी देर ही दिया है. चलिए कोई बात नहीं. सनावला बिरो ये मर्शद मौजूद है. हेलो हिदायतुल्लाह, क्या कहते हैं वैसे आज. ये भी वैसे बात है, पता नहीं क्यों नहीं किया. इकबाल लाशारी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया. और उसके अलावा पोस्ट को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से कीजिए. और साथ साथ जो है ना, यहाँ पर हम ये वाला प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक लगाएंगे. अच्छा, मेरे प्रोग्राम में बहुत से लोग हैं, इतने सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि जो है ना वो फौजिया सुमरो का गाना सुनाए हमें. तो फौजिया सुमरो का जो गाना है ना वो मैंने लिस्ट में लगा लिया है. ये गाना हम आप लोगों के साथ साथ सुनेंगे और उन तमाम लोगों को डेडिकेट करेंगे जो फौजिया सुमरो का गाना सुनना चाहते हैं.

अच्छा किशोर भाई आप चाहते अलग हो लेकिन वो चाहते अलग ना हो, तो अब मैं तो बीच वाला इंसान हूँ ना, तो मैं क्या करूँ। तो फिर हमें बात माननी पड़ जाती है। बाकी आप जरूर ट्राई करके देखिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम, और साथ में आप फेस वॉश ट्राई जरूर कीजिएगा डी स्किन वालों का, ठीक है। डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये बड़ी कमाल की चीज है, तो इसको आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, ये ऑल स्किन टाइप के लिए। और मजे की बात यह है कि इसके अंदर जो है ना वो वाइटामिन ई बीड्स शामिल है, जो कि पाकिस्तान में बहुत ही गिने चुने प्रोडक्ट आते हैं जिसके अंदर मौजूद होते हैं। और उन्हीं प्रोडक्ट में आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके अंदर वाइटामिन ई बीड्स शामिल है, जो कि गहराई तक आपकी स्किन में अंदर जाते हैं, आपकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं, आपके चेहरे को निखारते हैं और आप लोगों को बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश, ताकि आप लोगों को परफेक्ट वाला निखार मिले। और इसी के साथ साथ यहाँ पर प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, तो हम आप लोगों से इजाजत लेंगे, और इसी के साथ साथ आप लोगों से और हमारी जो मुलाकात है वो कल वाले प्रोग्राम में होने वाली है, यानी कि 1 बजे से लेकर 3 बजे तक हम आप लोगों के साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम में फन करते हैं, बातें होती हैं, खूबसूरती की बातें करते हैं और आप लोगों को ब्यूटी टिप्स देते हैं, ठीक है ना। तो आप हमारा जो है ना ऐसे ही साथ दिया करें जैसे आप देते हैं हमेशा, और इसी के साथ साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें। सो मुकलानी नाही बाबू सिंह सलामत, सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय, लव यू ऑल।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे.
3: और
4: ایک جس میں رہے اللہ حضرت سے حق فتح یاب اور باطل حزیمت سے دوچار ہوا. افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ ہندوستان کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کی پشت پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماجگاہوں کا مکمل خاتمہ کرے.
5: हक वारी जंग रुगो बिन मुल्कन जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बनियाल मरसूस की कामयाबी की साल पूरो थियण जी थियो में कोठियाल तकरीब के खिताब कयो. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त हक वारी जंग 7 मई जे विच में रात का 10 मई ताईं दुश्मन असांजे क़ौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई. मई 2025 जी जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई. बासी में दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद ऐं हथ ठोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई पर हक जी जंग में भारतीय जहाज जो मुंहुं टोड़ जवाब ॾिनो वियो. पाकिस्तान दुश्मन खे हर भेरे शिकस्त जो मुंहुं ॾिसणो पियो. ऑपरेशन बनियाल मरसूस खे 1 साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़द ख़ासि तक़रीब खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त दुश्मन ॼाणी वठी पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिहाई ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा. भारत जो ख़्वाब आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जारियत ऐं सफारती अकेलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे. इहो ख़्वाब हुन जे कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो. फिदा मज़ारनि ऐं पाक फिज़ाए जे शाहिननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो. अवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि था क़ाबिले क़बूल नाहे. भारत जंग जे नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो.

पाक फौज के जदीद घुर्जन से लेस करने लाइ डिफेंस फोर्सिस हेडक्वार्टर्स कायम कर छो। बरदार इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक गडियल दिफाई मुआहदो असि सफारती कामयाबियों में सब का वही कामयाबी है। अज पाकिस्तान पे असरती जिम्मेवारानी ए अणधुरी सफारतकार जरिए तारीखी अमन गाल मेजबानी कर रो है। फील्ड मार्शल सैद आसम मुनीर किताब में असं हर महाज से कश्मीरी आवाम की सियासी सफारती इखलाकी मदद जारी रखी। असि मंजिल वो मकाम है जिनो ख्वाब अस बुजुर्ग डिठो हो। पाकिस्तानी कौम असि ताकत है असी कौम की कुवत आयो। पाकिस्तान जो मुस्तबिल इंशाला तमाम घणो रोशन है।

0: खतरे से हट जाते हो, क्यों की जमीन हर जाए है, हल चल है सफेद आता ही, हर हर दिल पर है बच्छाई है, गाले हैं खुदा का वार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम।
1: हक जी जंग में भारत जी प्रमनाक शिकस के एक साल मुकम्मल, आज समूरे मुल्क में फतेह जो जश्न मलाया पे बने। जीएचक्यू रावलपिंडी में शानदार तकरीब, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तकरीब में मेहमान खास तौर शिरकत, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, मेयर एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिंधु ए नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ के शहीदन की यादगार से हाजिरी, गुलदस्तो रखियो, फातेह खानी कई। ISPR पारा जारी थियल बयान में कौम की हिमायत से हथियारबंद फौज सभी अंदरूनी ए बाहरी चैलेंजन के मुंह डेण लाइ मुकम्मल तौर से तैयार है। जंग में फतेह हथियारबंद फौज की तैयारी चाह ए पेशावराना सलाहियत जो सबूत है। हक की जंग में कामयाबी आवाम जो हथियारबंद फौज के एतमाद के मजबूत किया है।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है, GAFM 88 नेटवर्क, GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी, मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस, चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
5: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
6: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
7: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
8: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
7: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतुन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
7: औलाद जो न थियण और तुझे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियन, कमजोरी आई औरतों ने बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदिया है आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदिया है।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
10: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
9: त पोए 0.4 मातली बदीन एक एड़ो एफएम रेडियो आए
7: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
9: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
7: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 0331252576
9: जी हा 3135525786
7: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
5: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे.
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली. वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230.
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी. छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो. सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो. मोबाइल नंबर 03002962435. एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली.
3: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है.
7: सुनते रहो GFM 90.4.

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347321230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटमिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
5: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-32-41-230।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
8: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
5: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस।
2: इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
6: 538 शहरों में बैंक कलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
7: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक कलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
2: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक कलबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
9: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
8: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
9: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
8: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
9: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
10: केश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियन औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियन कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: It's 4 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: 2001, 2008, 2016 और 2019 के नाम वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान माज़ी भी इल्जाम तराशी, मुबालगा आराई, जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह तसव्वुर के लिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और क़लील मुद्दती सियासी वाली मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश कर रहा है. मौत-ए-हक़ महज दो मालिक या फौज के दरमियान लड़ी जाने वाली जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये दो नज़रियात के दरमियान एक फैसला मौका था जिसमें अरे अल्लाह हजरत से हक फतायाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ. अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की इमा पर फितना ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान की पुष्पनाना ही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और समाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे.
4: हक वारी जंग रुगो बिन मुल्क जी जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बनान मरसूस जी कामयाबी के साल पूरो थियण ते GHQ में कोठायल तकरीब खिताब. फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चयो त हक वारी जंग 7 मई जी विच वारी रात खां 10 मई ताईं दुश्मन असांजे क़ौमी वकार खे आज़माइण जी नाकाम कोशिश कई. मई 2025 जी जंग खां ओचितो ईंदड़ जंग न हुई. माज़ी में बि दुश्मन पाकिस्तान ते बेबुनियाद ऐं हथ ठोकिया इल्ज़ाम लॻाइण जी कोशिश कई, पर हक़ जी जंग में भारतीय जारियत जो मोह टोड़ जवाब ॾिनो वियो. पाकिस्तान जे दुश्मन खे हर भेरे शिकस्त जो हिकु साल मुकमल थियण ते GHQ में मुनक़द ख़ासि तकरीब खे ख़िताब कंदे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चयो त दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान ख़िलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इंतिहाई ख़राब, ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा. भारत जो ख़्वाब आहे त पाकिस्तान खे अस्करी जारियत ऐं सफ़ारती अकेलाई जो निशानो बणाए ख़िते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे. इहो ख़्वाब हुन जी कद ऐं सलाहियत खां घणो वधीक आहे जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो. फतेह मिज़ारनि ऐं पाक फिज़ाए जे शाहिननि दुश्मन जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि खे कामयाबीअ सां निशानो बणायो. आवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी, सरहदी सलामत ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठाह क़ाबिले क़बूल नाहे. भारत जंग जे नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्तनि ताईं अदा कंदो रहंदो.

पाक फौज के जदीद खोजन सा लेस करण लाए डिफेंस फोर्सिस हेडक्वार्टर्स कायम कर छो पर ब्रादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक कडियल दिफाई मुहिदो अस सफारती कामयाबी में सब का वही कामयाबी है। अज पाकिस्तान पंजे असराती जिम्मेवारी अणधुरी सफारतकारी जरिए तारीखी अमन गाल मेजबानी कर रो है। फील्ड मार्शल सैद आसिम मुनीर पंजे खिताब में असि हर महाज से कश्मीरी अवाम की सियासी सफारती इखलाकी मदद जारी रखासी असाजी मंजिल वो मकाम है जिनो ख्वाब अस बुजुर्ग डिठो हो। पाकिस्तानी कौम असाजी ताकत है असी कौम की कुवत आयो। पाकिस्तान जो मुस्तबिल इंशाल्लाह तमाम घणो रोशन है।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-230।
7: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
0: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: 2008 2016 और 2019 के नाम में वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील हैं कि हिंदुस्तान माजी भी इल्जाम तराशी मुबालगा आराई जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह उन सब के जरिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसल्लत करने और ताकत के जोन में तंग नजर और कलील मुद्दती सियासी वास्तवी मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। मौत हक महज दो ममालिक या वाद के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दोनों नज़रियात के दरमियान एक फैसलन मुआका था जिसमें अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हज़ीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान का सिर्फ एक मुतालबा है कि वो हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल-ख़वारिज और फितना अल-हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और अमाजगाहों का मुकम्मल खात्मा करे।
1: हक वारी जंग रुगो बिन मुल्कन की जंग न हुई पर बिन नजरियन में फैसलाती जंग हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो ऑपरेशन बनारन मरसूस की कामयाबी के साल पूरे थियण जी एच क्यू में कोठायल तकरीब के खिताब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चाहे तो हक वारी जंग 7 मई के विच में रात का 10 मई तई दुश्मन असाजे कौमी वकार के आजमायण की नाकाम कोशिश कई। मई 2025 की जंग का ओचितो ईंदड़ जंग न हुई। माजी में भी दुश्मन पाकिस्तान से बेबुनियाद हथ ठोकया इल्जाम लगाने की कोशिश कई पर हक की जंग में भारतीय जहाज जो मुंह तोड़ जवाब दिनों वो पाकिस्तान दुश्मन के हर भेरे शिकस्त जो मुंह दिसण पो ऑपरेशन बनारन मरसूस के एक साल मुकम्मल थे जीएचक्यू में मुनद खास तकरीब के खिताब करते फील्ड मार्शल आसिम मुनीर चो

0: दुश्मन ॼाणे वठे त पाकिस्तान खिलाफ़ अॻिते अगराई जा असर इन ताईं ख़तरनाक ऐं तकलीफ़ ॾींदड़ हूंदा। भारत जो ख़्वाबु आहे त पाकिस्तान खे असरी जारियत ऐं सफ़ारती अकेलाई जो निशानो बणाए खिते में ताक़त जो तवाज़ुन तब्दील करे। इहो ख़्वाबु हुन जे कद सलाहियत खां घणो वधीक आहे, जेको पाकिस्तान कॾहिं बि कामयाब थियण न ॾींदो। फतेह मिज़ाइलनि ऐं पाकिस्तान फिज़ाया जे शाहिननि दुश्मननि जे 26 खां वधीक फ़ौजी हथनि जी कामयाबीअ सां निशानो बणायो। आवाम ऐं क़ौमी क़यादत जो पैगाम आहे त मुल्की ख़ुदमुख़्तियारी, सरहदी सलामती ऐं क़ौमी वक़ार ते को बि ठाहर क़बूल नाहे। भारत जंग नतीजे में थियल जानी ऐं माली नुक़सान जी क़ीमत ईंदड़ वक़्त ताईं अदा कंदो रहंदो।
1: सोलर ऐं बैटरी ते डायरेक्ट हले ऐं बाक़ी तमामु पखनि जे मुक़ाबले में ज़बरदस्त हवा। रॉयल इनवर्टर फैंस, साथ ज़िंदगी भर का।
2: सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड, किसान की उम्मीद, खुशहाली की नवीद।
3: दुनिया भर में सबसे ज्यादा बिकने वाली पाकिस्तानी प्रोडक्ट फाइजर ब्यूटी क्रीम।
2: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और झाड़ देने वाला सनक्रॉप ग्रुप का डायमंड राइस सीड, किसान।
4: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
1: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
2: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
3: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
4: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
5: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 347-3141-200।
6: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
7: 03125252786।
6: जी हा, 3135525786।
7: GAFM रेडियो नेटवर्क,
6: सिंध जो आवाज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
3: सुनते रहो GFM 90.4

अपनी माँ को किसी भी तरीके से ये एहसास दिलाने की कोशिश कर सकते हैं कि आपकी जिंदगी में सबसे खास और मोहतरम हस्ती आपकी माँ ही है। तो जनाब, माओ का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और माओ का रुतबे से कौन वाकिफ नहीं है। बिल्कुल जनाब, हर इंसान माओ के रुतबे से वाकिफ है और माओ की खिदमत में कोई कसर उठा के नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि वही माँ जनाब जब हमें पैदा करती है तो वो हमारे मतलब के हर कदम से लेकर हमारे जनाब हर सांस लेने तक हमारी महाफिज होती है। बिल्कुल जनाब, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, अभी जिंदा है माँ मेरी मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ साथ चलती है। तो बिल्कुल जनाब, जिन लोगों की माएं हयात है, हमें हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका साया उन तमाम लोगों पर हमेशा कायम दायम रखे और वो हमेशा खुश व खुर्रम रहे और अपनी माओ के संग संग रहें, क्योंकि माँ की दुआ जनाब, अगर माँ चली भी जाती है खुदा ना खास्ता, तो माँ की दुआ हमेशा हमारे साथ रहती है। तो बिल्कुल जनाब, इस वक्त आपका अपना शो है, आज मदर्स डे स्पेशल शो है, माँ प्यारी माँ आई लव यू माँ। तो बिल्कुल जनाब, ये हमारा और आपका साथ रहेगा 5 से 7 बजे तक, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आज फरमाइशें नहीं प्ले करेंगे जनाब, आज सिर्फ माँ की बातें करेंगे, माँ के गाने प्ले करेंगे और जनाब हम कोशिश करेंगे कि हम मदर्स डे पर पूरे सॉन्ग आज मदर डे वाले ही चलाएं, कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ रहिएगा और आज आप आए तो प्लीज मदर्स की बातें करें, अपनी माओ की बातें करें, अपने माओ के बारे में अशार सुनाएं, अपने माओ के बारे में कोई मैसेज कन्वे करें, वो बात हमारे साथ शेयर करें, तमाम लोगों के साथ शेयर करें जो कि आज तक आप अपनी माँ को कह नहीं पाए ना। बाजुकात ऐसा होता है कि बहुत शाय बच्चे होते हैं, अपनी माँ को वो नहीं कह सकते जो कि उनके दिल में होता है। माँ तो कह देती है लेकिन बच्चे जो है थोड़ी सी शर्मीलापन जो उनमें उनके दरमियान हायल हो जाता है और वो बेचारे सोचते रहते हैं कि आखिर हम अपनी माँ को कैसे बताएं कि हम उन्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो शर्माने की बिल्कुल बात नहीं है, मेरा शो आपके लिए है, आई लव यू माँ, जिसमें आप हमें कॉल करके हमें मैसेजेस करके आप बता सकते हैं कि जनाब आपका जो है प्यार आपकी माँ के लिए कितना है और जनाब हमारे साथ शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर जनाब, मैं शो का पहला सॉन्ग आई थिंक प्ले करने लगा हूँ। बिल्कुल जनाब, शो का पहला सॉन्ग द वन एंड ओनली रहीम शाह की वॉइस में है, जो बहुत ही मशहूर जमाना सॉन्ग है, बां मुझको झुलाओ ना झूला। तो इस ट्रैक को सुनिएगा और हमारे साथ रहिएगा बिल्कुल जनाब, क्योंकि हम आपके साथ हैं 7 बजे तक। तो हमें छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा क्योंकि आज मदर्स डे स्पेशल है और यकीनी तौर पर तमाम जो लोग हैं हमारे साथ वो यही चाहते हैं कि अपनी माओ को ट्रिब्यूट पेश करें और हमारे साथ रहकर आप अपनी माओ को डेडिकेशन कर सकते हैं, शायरी पढ़ सकते हैं, उनके बारे में हमें बता सकते हैं।

0: जी जनाब वेलकम बैक अमा मुझको जिलाओ ना झूला। क्या बात है, बहुत प्यारा सा और बहुत जबरदस्त सा ट्रैक हमने आपकी समातों की नजर किया, चुके यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आया होगा। 5:23 टाइम इज राइट नाउ। माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है जनाब। माए जो है वो कुदरत का एक हसीन तोहफा है जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है। दोस्तों अगर देखा जाए तो माओ के लिए एक दिन की याद आवरी कोई मायने नहीं रखती। माँ तो माँ एक ऐसी हस्ती है जिसके लिए हर पल, हर साथ, हर रोज और हर बरस मुकद्दस होना चाहिए। माँ की शख्सियत यादगारी दिनों या त्योहारों की मोहताज है ही नहीं जनाब। हम हर दिन अपनी माँ के नाम करें तो ही ज्यादा अच्छा लगता है, तो ही ज्यादा बेटर होता है, तो ही जबरदस्त होता है। तो बिल्कुल जनाब, माओ की कभी भी नाफरमानी ना करें और अपनी माओ की हमेशा कदर करें। लेते हैं शो की पहली कॉल, देखते हैं हमारे साथ लाइन पर कौन आ चुके हैं। जनाब आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कौन हमारे साथ जनाब?
1: जवार
0: मोहम्मद बचर शंबानी साहब, तव्हां खे हैप्पी मदर्स डे। ऐं तव्हां अॼु जो ॾिहाड़ो कीअं था गुज़ारियो ऐं पंहिंजी अमर जे लाइ तव्हां छा चवणु चाहींदव?
1: कुझु सर कलाम चंद जे अमर जे बारे में।
0: जी जी बिल्कुल,
1: दिलि थी तव्हांखे
0: ॿुधायां। ॿुधायो जबरदस्त जबरदस्त ओ अमा ओ मां तुते सदको थियां मुंहिंजी मिठड़ी अमा। त बिल्कुल जनाब, बिल्कुल बिल्कुल हींअर मुंहिंजी प्ले लिस्ट में लॻल आहे इहो सॉन्ग, ऐं तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदासीं। पर तव्हां उन्हनि औलादनि खे छा चवणु चाहियो था जेको माउ जी क़दुरु ई कोन था कयनि ऐं माउ जी नाफ़रमानी था कयनि? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही था चओ। त उहा जेको माउ पीउ जी क़दुरु न कंदा आहिनि, स्पेशली माउ जी क़दुरु न कंदा आहिनि, त उहे हर जहान में ख़्वार थींदा आहिनि ऐं उनखे कोई बि शइ नसीब न थींदी आहे। बिल्कुल बिल्कुल। त तव्हां इहो गानो अॼु पंहिंजी मदर खे डेडिकेट कयो आहे, तव्हां पोएट्री बि डेडिकेट कई आहे। थैंक यू सो मच जवाहर बचर शाह संबानी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब, माँ की बात कर रहे हैं तो दुआ को हाथ उठाए हुए लरसता हूँ, दुआ को हाथ उठाते हुए लरसता हूँ, कभी दुआ नहीं मांगी थी माँ के होते हुए। तो जनाब लेते हैं शो की एक और कॉल, देखते हैं लाइन पर हमारे साथ कौन आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। मुझे प्यारा मीठा भाग के रसा सभी सागर। सॉरी तवाजी आवाज सही नहीं पी अचे, केर पे गरायो गोच वली दाद खां, तवाजी आवाज सही नहीं पी अचे अदा। आप हमें कॉल कर सकते हैं पर आप वहां पे खड़ी हुई जहां पे आपकी आवाज बहुत क्लियर आए, क्योंकि मैं यहां से हेलो हेलो करते रहता हूं, वहां पे से हाय हाय करते रहते हैं, लेकिन आपकी आवाज बिल्कुल सही नहीं आती है। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जनाब, आप हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर, क्योंकि हम आपके साथ शाम के 7 बजे तक हैं और हमारे साथ बहुत से लोग आ रहे हैं जनाब। और कॉल कीजिए हमें, आज मदर्स डे है, अपनी माओ को ट्रिब्यूट पेश कीजिए, क्योंकि आज का दिन जो होता है वो स्पेशली तौर पे माओ के नाम है। आई लव यू माँ शो है, आशफाक आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। कौन हमारे साथ कह रहे हैं? सबरी सागर साहब।
2: हाफिज लखवी फ्रॉम मोरो।
0: हाफिज लखवी फ्रॉम मोरो। मोरो वाला सब साथी की है नदाब? बिल्कुल बिल्कुल। ऐं मदर जे हवाले सां छा चवणु चाहियो था? माउ जहिड़ी मिठड़ी हस्ती जे बारे में तव्हां अॼु छा चवणु चाहियो था, छो त अॼु माउनि जो आलमी ॾींहुं मल्हायो पियो वञे?

0: हिक ॾींहुं हिन छोकिरे जूं जासूसी माराईंदियूं असांखे।
1: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
0: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
1: बाबा इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचाव। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: छा अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी? हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम। अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप। वाइट एज ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो राज बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
7: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
6: अम्मा आयशा अस्पताल, लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर।

0: डॉक्टरी आणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो नथी अण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: जी जनाब, वेलकम बैक. मां मंजिल ॾिसां मुंहिंजी मिठड़ी आहे. मां अॼु माउरनि जो आलमी ॾिहाड़ो मल्हायो पियो वञे. जनाब, जी एफ एम 88 तव्हां ट्यून कयो आहे. तव्हां सभिनी दोस्तनि सां गॾु आहे अशफाक नियाज़ी. ऐं जनाब, तव्हां असांखे कॉल बि करे सघो था. असांजे नंबर ते वठूं था शो जी नेक्स्ट कॉल. नंबर बि तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त नंबर चाहे 03000113488 ते तव्हां असांखे कॉल करे सघो था. ऐं पंहिंजे जज़्बात, पंहिंजे अहसासात, पंहिंजी माउरनि जे हवाले सां असां सभिनी सां शेयर करे सघो था. छो त जनाब, इहा अॼु जो ॾींहुं जेको आहे तमामु घणो ज़बरदस्त ॾींहुं आहे. छो त अॼु जो ॾींहुं असां पंहिंजे माउरनि जे ट्रिब्यूट पेश कंदा आहियूं माउरनि खे. बिल्कुल जनाब, ऐं उहे त असांखे हर ॾींहुं ट्रिब्यूट पेश करणु खपे. असांखे हर ॾींहुं जेको आहे न पंहिंजी माउरनि जे नाले करणु खपे. ऐं उनखे माना ईअं फील करणु खपे त उहा असांजी ज़िंदगी जी वाहिद उहा ख़ातून आहे जेका असांजे दिलि जी राणी आहे. बिल्कुल जनाब, ऐं असांजी ज़िंदगी जी मालिक आहे. त बिल्कुल इहो हिकिड़ो ॾींहुं न, पर हर ॾींहुं असांखे इहो ई पंहिंजी माउरनि खे फील करणु खपे त उहा असांजी ज़िंदगीअ जी कर्ता धर्ता आहिनि, उहा असांजी ज़िंदगीअ जी मालिक आहिनि. ऐं उन खां अलावा जेको आहे असां जेको आहे असांजी दुनिया सुनी सुनी आहे. त बिल्कुल जनाब, पंहिंजी माउ खे ट्रिब्यूट पेश कयो. उन जे लाइ कोई शायरी आहे त प्लीज़ अची करे मूंसां शायरी बि उनजे नज़र कयो. ऐं कोई गानो आहे त तव्हां गानो बि गुनगुनाए सघो था. कोई मैसेज पंहिंजी मदर खे ॾियणु चाहियो था त जल्दी सां अचो. 03000113488 असांजो नंबर आहे. टाइम इंतिहाई शॉर्ट आहे, पर असां तव्हां सां गॾु आहियूं पंहिंजी खां सते ताईं. हिन कलाक जो टाइम जेको आहे ख़तमु थियण वारो आहे, छो त इन कलाक खे पूरो थियण खां असां बि कोन था रोके सघूं. बिल्कुल जनाब, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुख आया, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई. तो बिल्कुल जनाब, जो हमारी माएँ होती हैं वो हमारी जिंदगी का सरमाया होती हैं. और मैंने जैसे पहले ही कहा कि एक पढ़ी लिखी माँ जो होती है वो नस्लें संवार देती है, और नस्लें जब संवर जाती हैं तो कौमें सुधर जाती हैं. लेते हैं शो की एक और कॉल. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: कौन हमारे साथ जनाब इतनी जल्दी में?
1: सर, मोहम्मद
0: ताहिलुंड साहब. थोड़ी ब्रेकों पे पांव रखें और मुझे बताइए कि आज जो है मदर्स डे मनाया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
1: जी बिल्कुल, हमारी जो फैमिली हमारी तबियत खराब होती है वो आज बहुत होती है, और हमें चाहिए कि हम अपनी माओ की इज्जत करें, ना उनके जो है ना और उन्हें.
0: बिल्कुल घट वधि न ॻाल्हायूं. अच्छा, तव्हां इहो ॿुधायो त अॼु जो ॾींहुं जेको आहे तव्हां पंहिंजी माउ खे कीअं स्पेशल फील करायो आहे? कोई तव्हां हुनखे गिफ्ट ॾिनो आहे? तव्हां हुनखे किथे घुमाइण फिराइण या खाराइण वठी विया आहियो या न? बस ईअं ई, बसि ज़बानी कलामी, हैप्पी मदर्स डे ममा, बसि.
1: जी,
0: तव्हां पंहिंजी मदर खे कोई गिफ्ट ॾिनो आहे? किथे घुमाइण फिराइण वठी विया आहियो पंहिंजी मदर खे? अचो भला, अचो पर हाणे तव्हां फारिग थिया आहियो त पंहिंजी मदर खे स्पेशल फील करायो, हुनखे किथे वठी वञो घुमाइण लाइ, खाराइण लाइ कंहिं सुठे होटल ते, ऐं उनखे ॿुधायो त तव्हां हुन सां केतिरो प्यार कंदा आहियो. बिल्कुल, तव्हां वठी वञो, छो त असांजी माउनि जेका आहिनि तमामु घणियूं असांजे लाइ अहमियत जे हामिल हूंदियूं आहिनि, छो त असांखे नंढपिण खां ई जवानी ताईं असांजो ख़ासि ख़्यालु रखंदियूं आहिनि, असांजी हर शइ जो ख़ासि ख़्यालु रखंदियूं आहिनि. त असां ते बि फर्ज़ आहे त हुननि जो ख़ासि ख़्यालु रखियूं.
1: बिल्कुल बिल्कुल सही, पाण दुख ते हूंदा आहिनि लेकिन असांखे ख़ुशि रखण जी कोशिश कंदा आहिनि.
0: बिल्कुल बिल्कुल, जॾहिं सभु कुझु सम्झो था त पोइ हिनखे स्पेशल फील छो नथा करायो पंहिंजी माउरनि खे? अदा
1: जी जी साईं, बिल्कुल.
0: हा, त तमामु माण्हुनि खे, तमामु दोस्तनि खे छा मैसेज ॾियणु चाहियो था?
1: सभिनी दोस्तनि खे मैसेज ॾींदासीं त पंहिंजनि खे जेको आहे सो हुननि जी इज़त कनि, हुननि खे घटि वधि न कंदा आहिनि, ऐं हुननि खे जेको आहे सो ख़्यालु रखनि.
0: बिल्कुल ख़्यालु रखनि. थैंक यू सो मच अदा ताहिर साहब, पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो.
1: ऐं कुझु दोस्त आहिनि साईं?
0: हा हा, बिल्कुल शामिल कयो. बहुत जल्दबाजी में थे और कोई बात नहीं, जनाब जल्दबाजी इस तरह हो जाती है. और राज की गर्मा गर्मी है लेकिन आपका ठंडा ठास शो हम आपके लिए लेकर आए हैं. आई लव यू माँ, मदर्स डे के स्पेशल मौके पर, तो आप हमारे साथ रहिए. अब चलते हैं जनाब एक अदद ब्रेक के जाने. ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं आपके शो आई लव यू माँ में. तो सुनिए और सुनते रहिए जी एफ 88 नेटवर्क से आपका अपना शो विद अशफाक नियाज़ी.
2: It's 6 PM. This time check is brought to you by.
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो
4: तहज़ीब ऐं सक़ाफ़त से सजी सिंध की मेहमान नवाज़ धरती,
5: जिसके
2: नई फजाओं में रची।
4: अब आप सुनेंगे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

2008 2016 और 2019 के नाम में वाकयात यानी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस इस बात की दलील है कि हिंदुस्तान माज़ी भी इल्ज़ाम तराशी मुबालगा आराई जंगी जुनून और महदूद जाहिरियत के गुमराह तसव्वुर के जरिए पाकिस्तान पर नाजायज जंग मुसलसल करने और ताकत के ज़ोन में तंग नजर और कलील मुद्दती सियासी वाली मकासद हासिल करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। मौत हक महज दो ममालिक या वाक के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी बल्कि दर हकीकत ये दो नजरियात के दरमियान एक फैसला मौका था जिसमें अरे अल्लाह फजल से हक फतायाब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के सिर्फ एक मुतालबा है कि वह हिंदुस्तान की इमा पर फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान की पुष्पनाही बंद करे और अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दी के मराकज और अमाज गांवों का मुकम्मल खात्मा करे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: किरु शोक हो ना तो खे मुझे रो पाए तैयार थे जो
3: तू आज भी हसी
2: थोड़ो पाए तो देखार
4: ना माँ मां थकी पई आया
2: न पुट ही थकना है रत जी कमी है दिस त केडो न फिको थी हुआ है तुंजो चेहरो
4: छा कया मां
2: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद साही अई हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाइंदी कर पुट तोके खबर है असा त मेवन जो खलूब खाई विंदा हुआ से उनन साही त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अनई बार रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही जो ख्याल रखन बेन खां प वधिक जरूरी है
3: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको
5: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफा पेश कयो वयो।
6: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
7: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
8: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
7: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
8: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
7: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
8: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
9: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
7: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
9: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
7: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
9: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
7: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
9: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
7: 03125-25786।
9: जी हा 2315-25-786
7: GAFM रेडियो नेटवर्क
9: सिंध जो आवाज़।

0: ने तताओं ने के रोज अंडा खा रहे जो मंजन जी मानी में सूफ दी जो तजियो स्कूल में मुआगुर थकेला थकेला ना हो जाए।
1: बारन में कमजोरी अक्सर जरूरी गिजाई जुजन जी घटता ही हुंदी आहे जेका उनन जे सिखण
2: मोहम्मद शरीफ चाचर जिले जैकमाबाद खां इलाही गर्मी पई थी मां बुधवा है जैकमाबाद में
3: सही वरी गर्मी आ सही हन वक्त सप्ता बाद कम कार वक्त कड़ी डाल शाम जी
2: हाय हाय अल्लाह रहम कदो इते भी इलाही गर्मी है मां इन वक्त पगरो पगर थी बैठो आ ता सबनी सा बगैर प्रोग्राम भी किया तो तवा के हैप्पी मदर्स डे आज माउन जो आलमी दिहाड़ो तो मलाए वने तो तवा माउन जे हवाले से छा चवण चाहो था
3: सही असा ये चवण चाहंदा त अमर जड़ी तक सही ना है
2: बिल्कुल
3: इतनी दिन खिदमत कजे ओतरी नी है
2: जी जी
3: सही
2: जी
3: देखे बाहर बुधा तो असागे इ के करण खपे त अमर जी तई खिदमत कजे अमर जे चवण में
2: हां
3: मथे ओतरो फायदो आहे तो ने भी फायदो आहे तो ने फायदो
2: आहे सही सही सही बिल्कुल बिल्कुल तव्हां सही था चओ अच्छा इहो ॿुधायो त अॼु
3: ॾिसो सर सर जे मन सां निंडा आहे त असांखे हुननि पालियो हिन मंगल ते आयो
2: बिल्कुल बिल्कुल अज जेतरी भी असा जै भी मंजिल चाहूं तो उनमें असा मदर जो किरदार तमाम घणो अहम है
3: हाँ
2: बिल्कुल अगर वो न हो जाए तो असा कड़े भी कम जना हो जाऊँ हाँ जी जी
3: तो उन्होंने को पछा के तो उन्होंने दिल में छा गुजरे तो
2: सही सही बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
3: अमर साईं वॾी साईं शइ आहे ॾींहं दुआ आहे राति जी दुआ आहे हुनजी पर जो दुआ आहे त माना तूं हुनजी ख़िदमत कंदे हुन खां दुआ वठ
2: जी जी बिल्कुल बिल्कुल तव्हां सही चयो आहे तव्हां बिल्कुल सही चयो आहे दादा जैकमाबाद वारा मुंहिंजा प्यारा भा इहो ॿुधायो त हाणे मां गानो ॿुधाइण वारो आहियां मां जे हवाले सां कंहिंजे नाले था करणु चाहियो
3: सभ खां पहिरियों आवाज़ नाले हुजे गानो
2: जी जी
3: चारो दोस्त
2: मुज़म्मिल भा मुज़म्मिल प्यारा बेटा कीअं आहियो ठीक ठाक आहियो ख़ुशि आहियो कहिड़ी क्लास में पढ़ंदो आहे
3: कई पढ़ंदो न आहे नंढो आहे चइनि सालनि जो नालो नंढो त मां थोरो ॿार
2: अच्छा इनशाला इनशाला के पढ़ायो सुठी तरबियत कयो एक भलो इंसान जी तव्हां पाण आयो इएं ठायो
3: बिल्कुल
2: हाँ थैंक यू शरीफ भा थैंक यू पंहिंजो ख़ासि कर थैंक यू सर थैंक यू सो मच जी जनाब हमारे साथ है जैकमाबाद से शरीफ भाई आप भी हमें कॉल कर सकते हैं 03000113488 पर और जनाब आज मदर्स डे के हवाले से अपनी माओ को पैगाम दें अपने प्यार का इजहार करें अस्सलाम वालेकुम
4: वालेकुम सलाम
2: जी वफीद वहीद वफाई आई थिंक
4: साईं बिल्कुल वफ़ा अब्दुल वहीद चवंदा आहिनि
2: वहीद वफ़ा ऐं तव्हांखे हैप्पी मदर्स डे हैप्पी मदर्स डे जे हवाले सां तव्हां छा चवणु चाहियो था
4: साईं बिल्कुल मन त लाशारे गया त ॿिया बि रिश्ता घणा
2: पर अमर जी दिल ज़ोर आहे बिल्कुल
4: असलमी जीजल जी जेतिरी बि ॻाल्हि कजे त घटि आहे
2: बिल्कुल
4: जीजल उहा शइ आहे जेका तूं अध राति मंझ राति ईंदी पर हूअ नेरनि झलियूं बीठी हूंदी त मां बचो अचे त मां खाधो खावायांसि
2: एग्ज़ैक्टली
4: किथे बि तूं कुंड कहिड़ी में बि तलाश कंदी त मां जहिड़ी बि अज़मत शइ न मिली सघंदी
2: मिलंदी कोन बिल्कुल वाकई
4: बिल्कुल ऐं हिकु ॻाल्हि मां जेतिरा आहे त दुआ जा दर खुलियल आहिनि मां जंहिं महिल हिन दुनिया मां वञी थी त दुआ जा दर पोइ इश्फाक भाई सम्झ बंदि थी विया
2: हा ईअं बि हूंदो आहे पर मां त हमेशा चवंदा आहिनि त मां अगरि हली बि वेंदी आहे त उहो पंहिंजे बचनि लाइ हमेशा दुआ कंदी आहे
4: उहा त दुआ कंदी आहे
2: जी
4: पर हिकिड़ो त बि साईं फ़र्क़ु आहे
2: बिल्कुलु हली वई त
4: असां इहो चवणु चाहींदासीं
2: जी
4: त जेके बि मां मैसेज ॾींदुमि हिन तव्हांजे चैनल जे थ्रू जेके बि अमृतनार आहिनि जंहिंजी ज़िंदा आहिनि जा मरी वियूं आहिनि त बि उते बाबा वञनि फाता कुलु
2: पढ़णो आहे बिल्कुलु बिल्कुलु पढ़णो आहे
4: जंहिंजो ज़िंदा आहिनि त उन सां मुंहिंजी इहा ई रुकेश आहे हथ ॿधी अपील थो कयां त पंहिंजे अमड़ियुनि जो ख़्यालु कयो
2: बिल्कुलु
4: अमड़ियुनि खे निगहबानी कयो उन्हनि खे चङो खाधो चङो माना उनजी निगहबानी मक़सदु उन में सभु कुझु अची वियो
2: बिल्कुलु जीअं उन्हनि असांजो नंढे हूंदे खां वॾे हूंदे ताईं ख़्यालु रखियो आहे त उन खां वधीक असां उन्हनि जो ख़्यालु रखियो
4: बिल्कुलु हाणे अॼुकल्ह अक्सर त इहो बि हली रहियो आहे दुनिया में त अॼु अहमियत अमड़ खे घटि था ॾियणो पियो
2: बिल्कुलु
4: बसि हाणे असां त वधीक न चवंदासीं
2: हाँ बिल्कुल, तमाम दोस्तों का रिक्वेस्ट है कि पांजी पी माँ के कदर कयो, उन्हें के उहा फैसिलिटेट कयो जी उन्हें तमाम के फैसिलिटेट कयो
4: बिल्कुल वधीक कयो तब इयो ता हले जो जीजल जे मनसब सा मनता दा लाशारे ता जीजल अम्मा जोरा ब्या फेरस्ता करा इयो हलेंदा ता मेहरबानी
2: बिल्कुल मुजी लिस्ट में आही यो गानो मा जरूर हलेंदम तहां दिल जाय कयो
4: ताकि यो हे सजो प्रोग्राम भाई इश्क का तंजे नाले
2: थैंक यू सो मच
4: हे दवा धानी जो मा जो रफीक जत बुदेवा तो गोली मारमो
2: हां हां
4: मुंहिंजो भाउ ज़हीर अमन जतोई
2: जी जी
4: मुंहिंजो भाटियो आहे अयाज़ अमन जतोई
2: सही
4: बाक़ी जेके आल टाल ॿुधंदा वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई पारां सिक भरियो सलाम
2: वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम थैंक यू अदा पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो थैंक यू जी जनाब हमारे साथ है वहीद वफा जतोई फ्रॉम सखर और मदर डे के हवाले से उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें की देखते हैं कि अब हमारे साथ अच्छी बातें करने कौन आ चुके हैं अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल बिल्कुल
5: तो मुझे लाए धन्यवाद
2: वाह वाह
5: तो मुझे लाए रहमत आई और

0: चिड़ी जमा।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: तो सवा ये दुनिया अधूरी।
1: वाह।
0: तो सवा ये दुनिया अधूरी, मुझी जिंदगी यहाँ पूरी, तो मुझी मिट्टी जमा।
1: वाह वाह वाह वाह।
0: मुझी खिदमत करे माँ जन्नत कमाई दुस।
1: वाह।
0: मुझी खिदमत करे माँ जन्नत कमाई दुस, तो जाते धोई माँ पियंद।
1: वाह वाह।
0: तो मुझी मिट्टी जमा।
1: ओ मुझी मिठड़िया माँ, मुझी मिठड़िया माँ। तो बिल्कुल जनाब, या शायरी

0: बिल्कुल बिल्कुल जो अमर जी वड़ी शान हुंदी आहे असा हमेशा उनके अहमियत देण खपे पंहिंजी जिंदगी का भी। थैंक यू सो मच अदा तां जी जी
1: कदे भी ये न चाहिए आदि समय ते तो नबी पाक सन फरमांदा त मां के सोन पियो जे घर में दाई केड़ी कीमती चाहिए पई जे
0: जी जी
1: तू बाहर उछला छड़े वो पुत्र के हक ना है औलाद के हक ना है छड़ो इतो चे रामा ये खो उछला ये।
0: हां बिल्कुल बिल्कुल मां जी वरी शान आता मां जी वरी शान आ। थैंक यू अदा थैंक यू सो जी जी
1: अहमद मुगलो जो कलाम उठाइंदा जे को
0: ओके मां सर्च करे तव्हांजे लाइ प्ले कंदुमि इनशाला
1: दोस्तान कुझु
0: जी जी
1: अरमामल बचल संभाणी
0: आहे जी जी
1: एयरपोर्ट सखर खां रजबली जूने जो
0: जी जी
1: भूरल फकीर बंदरो बंदरो न पर बलोच कराची आहियां।
0: ओके ओके अदा थैंक यू सो मच पंहिंजो ख़ासि ख़्यालु रखिजो। थैंक यू सो मच। बिल्कुल जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जारा खुशी सालार समय जो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जारा खुशी सालार समय जो कश्यप जारा।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hemme Diamond Glow Bleach Cream.
0: Sindh ki ho to awaaz bhi sindh ki hai. GFM 88 Network. Sindh ki awaaz.
2: सजो डी दिसा थी तो के परेशान घुमंदी रही आ पहरो भेरो मा थी रही आ ही ना मुझो भी यो ही हाल हो
3: खबर ना है तो आही सब कुछ की।

0: जी जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन एक बार फिर से आफ्टर द ब्रेक। और बहुत जबरदस्त गाने के बाद हम आपके साथ हाजिर हो चुके हैं। मदर्स डे स्पेशल शो है जनाब, आई लव यू माँ, और आप लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं 03-0001-3488 पर। लेते हैं शो की एक और कॉल। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन हमारे साथ?
1: अब्बास मलिक।
0: अब्बास मलिक साहब, कैसे हाल चाल है आपके?
1: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, दुआएं आपकी। आप सुनाए?
0: हाँ बिल्कुल मजे में। ये बताओ, आज मदर्स डे स्पेशल शो GFM88 नेटवर्क ने आपके लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम अरेंज किया है। ये बताइए, माँ के हवाले से आपको आपके क्या तासरात हैं, और माँ के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में?
1: आपका सवाल, जिनकी माए हैं हयात, अल्लाह ताला उनको लंबी जिंदगी दे और
0: आमीन
1: उनकी खिदमत करें। तो उनकी खिदमत करें, माँ के नेमल बदल कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा।
0: एग्जैक्टली।
1: और उनमें से ये है कि बंदा जो भी हमारी माँ या बाप जो भी एजेड हो जाते हैं, जितनी हो सके उनकी खिदमत करें,
0: उनकी खिदमत
1: करें। सब किसी के पास, हाँ सब किसी के पास माँ नहीं होती ना।
0: हाँ, हर किसी के पास माँ नहीं होती, हयात
1: माँ नहीं होती। हाँ
0: बिल्कुल हयात, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये बताइए कि आपको अपनी मामा की कौन सी बात याद आती है बहुत ज्यादा, कि वो उनमें ये क्वालिटीज होती थी और वो बहुत ज्यादा मतलब उसकी वजह से लविंग पर्सनैलिटी थी?
1: हम मतलब बाहर कहीं नहीं हो तो इंतजार होता था, हम तो इतने सोए हुए, हम जैसे एंट्री करते थे उनको पता चल जाता।
0: माँ को इल्हाम होते हैं, माँ को औलाद के हवाले से इल्हाम होते हैं। बिल्कुल।
1: हम अभी तक को प्यार नहीं मिला माँ के पास, वो माँ नहीं है, अल्लाह ताला जो जिनकी माँ नहीं है, अल्लाह ताला उनके जन्नत फिरदौस में आला जो मकाम दे, वो हयात लगता है उनको।
0: आमीन आमीन। वो कहते नहीं है, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, कल अपने आप को देखा था माँ की आंखों में, ये आईना हमें बूढ़ा नहीं बताता है। तो माँ का कोई नेमुल बदल नहीं होता, और माँ तो एक अनमोल हस्ती होती है जिसका जिसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं होता।
1: हाँ हाँ। और माँ का प्यार जो है वो कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी।
0: बिल्कुल।
1: बोलते हैं ना कि मसला नहीं है, चल जाता है, मगर माँ के साथ जिया जाता है, बाद में तो बस जिंदा ही रहता है बंदा बस।
0: हाँ बिल्कुल, बाद में बस जिंदा रहता है। माँ की कमी हमेशा फील होती रहती है, क्योंकि माँ, आपने जैसे कहा था कि माँ हमेशा नोट करती रहती है कि मेरा बच्चा बाहर है, वो आपको आपको लगेगा नहीं कि वो घर पे आपका इंतजार करे, लेकिन जब आप जाएंगे तो वो दरवाजे पे खड़ी होती है। क्योंकि ये कैसा कर्ज है, ऐसा कर्ज होता है जो हम अदा ही नहीं कर सकते। वो किसी ने खूब कहा है, मुनव्वर राना का एक शेर मुझे याद आ गया है, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। तो मतलब हम माँ की किसी भी अमल का, किसी भी प्यार का कर्ज लौटा ही नहीं सकते ना।
1: हाँ वैसे तो हर पैदल से अच्छी बात है मिलाना।
0: जी जी,
1: 10 तारीख देना मिलता है, मगर माँ के अलावा कोई देनी नहीं होगा ना, माँ के साथ ही हर दिन है।
0: सही, माँ के साथ
1: जी सके बंदा, माँ के साथ।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो आप अपने तमाम दोस्तों को, कोई सुनने वालों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से?
1: बस यही है कि जितना हो सके अपनी माँ को टाइम दें, क्योंकि हम बोलते हैं ना बाहर टाइम देते हैं दोस्तों को जो भी, और तो हम कहते हैं हाँ तो घर ही टाइम दे देंगे, बड़ा
0: होता एग्जैक्टली।
1: माँ को बात बहुत याद आती है, इसलिए जितना होंगे,
0: हाँ जितना जितना हो सके अपने पेरेंट्स को टाइम दें, माँ बाप को टाइम दें,
1: वालदेन को जितना टाइम दे सकते,
0: क्योंकि ये टाइम फिर दोबारा से नहीं आएगा, हम चाहे लाख कोशिश कर लें, लाख कोशिश कर लें।
1: हाँ
0: ठीक ठीक ठीक।
1: हाँ हम फील करते ना, अभी हमको पता है ना।
0: एग्जैक्टली,
1: हम पहले सोच रहे थे ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
0: हाँ क्योंकि हम लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हम माँ को खो देंगे, हम बाप को खो देंगे, हम कभी ये नहीं चाहते ना, हमारा दिल ही नहीं मानता कि हम ऐसा हो भी सकता है।
1: अभी तक

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।